0: पर मुझे विश्वास था आप आए बिना रह नहीं पाओगे।
1: इस वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि के।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि के।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्म।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तुहां सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

ए तुहां सारेयां दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे इस कार्यक्रम सुनण दे माटी दी महक तां सुणदे न कार्यक्रम दा अगला गीत। तुहां सारे इयां ही बनी रहा कने सुणदे रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसदा नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

यह तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहा सारे कार्यक्रम सुना दिन माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो सुन दिन कार्यक्रम दा अगला गीत तुहा सारे इही बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह तोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तोहा सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तोहा सारे ए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पंगे।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुख।

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: उदित, पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
1: तुझे उसे टीबी है। और भाई, लास्ट बेंच को मजा अकेले।
3: पता है ना, मुझे टीबी है।
1: चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: देख लो, कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही होगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं, मतलब तुम्हारे ही होंगे।
8: गजब टूबी वाला।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: बाल तो देखो,
1: अरे रंग लगाया
0: इसके बाल तो देखो,
1: अरे झूठे मोटे
0: इसके दांत तो देखो।

कर गया वो कैसे बाजार में ऐसे, शरीफों को हम रुसवा नहीं करते मियां जुम्मन, तैयब अली प्यार का दुश्मन, हाय हाय मेरी जान का दुश्मन, हाय हाय।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

0: हटो हटो हटो हटो हटो।
1: अरे देखो मेरे पति को क्या।
0: आप फिक्र मत करिए, मैं हूँ ना।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे थे अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए और वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

0: अपनों का साथ दें।
1: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
2: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
1: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
2: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
1: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
2: तुम्हें सच में लगता मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
1: कसम खाओ।
2: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
1: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं, मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है।
3: भारी मिस्टेक हो गया सर।
2: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
4: गजब टूटी वाला।

जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी दोस्त सुमन के साथ। तो श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में करेंगे हम ढेर सारी जानकारियां साझा और सुनवाएंगे आपको प्यारे प्यारे गीत। श्रोताओ, पूरे 2 घंटे का सफ़र आपके साथ रहेगा। इस 2 घंटे के सफ़र को खुशनुमा बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता फिर से हाजिर हो चुके हैं हम आपकी सेवा में। तो कहते हैं प्रत्येक सूर्योदय जीवन का सौम्य अनुस्मारक है, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो प्रकाश हमेशा लौट कर आता है। जी हाँ श्रोताओं, हर अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर होती है, और कहते हैं ना दुखों के बाद सुख भी जीवन में आता है। जीवन के उतार चढ़ाव यूं ही चलते रहते हैं, कभी जीवन में सुख आता है तो कभी जीवन में दुख आता है, पर ये ज़रूर ऐसा होता है कि अगर दुख है तो उसके बाद सुख ज़रूर आता है। जैसे रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात आती है, ये प्रकृति का नियम है। इसी तरह से हमारा जीवन का चक्र भी चलता रहता है। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों के साथ फिर से कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन।

श्रोताओं, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपने दोस्त सुमन के साथ। तो श्रोताओं, थोड़ा सा हम मौसम की ओर बढ़ते हैं और मौसम के हालात से तो आप सभी समझ ही चुके होंगे कि पिछले कल कितनी ज़्यादा बारिश हुई है और झमाझम बारिश ने तो कल नज़ारे ही लगा दिए। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो जब ज़्यादा बारिश होती है तो हम सबको रखना होता है अपना ख्याल, और थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हो रही हो तो थोड़ा सा रास्ते में रुक लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा बारिश में जो हमारा वाहन होता है, दो पहिया वाहन, वो भी फिसलने का डर लगा रहता है, स्किट हो जाता है और हर तरफ फिसलन बनी होती है। तो ज़्यादा बारिश में थोड़ा सा कहीं हम रुक सकते हैं और बारिश रुकने के बाद फिर से चल सकते हैं। तो वेदर की ओर रुक करें श्रोताओं, तो 24 डिग्री वेदर है और ह्यूमिडिटी की बात करें तो 88% मौसम में ह्यूमिडिटी बनी हुई है। तो श्रोताओं, मौसम की जानकारी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि ऐसे मौसम में रखना होता है हम सभी को अपना ध्यान और ख्याल। फिलहाल इस समय हमें रखना है आपका ध्यान और आप तक पहुंचाना है कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम वापस आते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां हमें अपने श्रोताओं तक पहुंचानी है। तो श्रोताओ, आज के दिन की बात करें, आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई के इतिहास की ओर थोड़ा सा रुक करें तो मास्को ओलंपिक में भारतीय हॉकी का स्वर्ण पदक, नासा की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल है, जिनका जिक्र अब हम थोड़ी देर में करेंगे। और उससे पहले कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की बात कर लेते हैं श्रोताओ। 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी और 1958 में अमेरिका के राष्ट्रपति डिवाइट आइजनहावर ने अंतरिक्ष एजेंसी नासा के गठन वाले अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे। श्रोताओ, 1980 में मास्को ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था और 1981 में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स ने लेडी डायना स्पेसर का विवाह हुआ था। और 1987 की ओर रुख करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में शांति समझौते पर हस्ताक्षर भी आज ही के दिन हुए थे। तो श्रोताओ, अपनी जानकारियां को देते हैं तो

0: के जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों को सेब सीजन से पहले सभी मुख्य सड़कों व संपर्क मार्गों को बेहतर बनाने के दिए निर्देश। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर भरे जा रहे हैं अध्यापकों के खाली पद। सरकारी स्कूलों में दाखिले के मामले में चंबा जिला अग्रणी। चंबा में अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की धूम। तीसरी सांस्कृतिक संध्या में लोक संस्कृति और पारंपरिक नृत्य ने बढ़ाई मेले की रौनक। और प्रदेश के अनेक स्थानों पर आज भारी वर्षा की संभावना। सिरमौर जिले में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। नाहन उपमंडल में आज शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के साथ खड़ी है और पेपर लीक की समस्या को भी मोदी सरकार ही खत्म करेगी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए सरकार

0: सरकार कड़ा कानून बना रही है।
1: आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से हमने ही खत्म किया है और पेपर लीक्स की समस्या को भी जड़ से खत्म करने का काम करें। तो देश के युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, ये देश के युवाओं के भविष्य की बात है, हमारी सरकार युवाओं के साथ है और युवा और मोदी सरकार ने मिलकर तय किया है कि एक ऐसा कानून लाएंगे जो आतंकवाद के खिलाफ बने कानून से भी ज्यादा सख्त होगा और दोषियों को कड़ी कार्रवाई करने पे भी काम आएगा। और आज का ये कानून आप देखिए, जो 2024 में हम लाए थे उसमें संशोधन करने के लिए लाए, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ ना कोई खेले उसके लिए सिस्टम बनाना चाहते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त व अर्थव्यवस्था, वाणिज्य व उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों व विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों व विभागों के बीच मजबूत टीम बनाने का आह्वान किया और अधिकारियों से साझा उद्देश्य की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। उन्होंने विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने और मिलकर परिणाम देने के लिए विभिन्न प्रकार की बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सेब सीजन से पहले सभी मुख्य सड़कों व संपर्क मार्गों को बेहतर बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कुल्लू मनाली लेफ्ट बैंक सड़क का निरीक्षण किया और कहा कि ये सड़क राज्य सरकार की प्राथमिकता है। लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि कुल्लू के गेमन ब्रिज से मनाली तक इस सड़क को सीमा सड़क संगठन के अधीन लाने पर विचार किया जा रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आगामी सेब सीजन से पहले लोक निर्माण विभाग सभी सड़कों को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहा है।
2: जो मनाली विधानसभा क्षेत्र का लेफ्ट बैंक सड़क है, ये हमारी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण सड़क है और लगातार इसमें हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि इसके अपग्रेडेशन और इसका जो रख रखाव है वो सही तरीके से हो। पीछे जो 2023 में और 25 में जो आपदा आई उसमें भारी नुकसान इसका हुआ और करीबन 10 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग जगहों में इसमें जो डंगे हैं, रिटेनिंग वॉल्स है और पैच वर्क है, उसका कार्य जो है वो करवाया है।
0: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार गंभीर प्रयास कर रही है और अध्यापकों के खाली पड़े पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है। चंबा में विभिन्न शिक्षक संगठनों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिले के स्कूलों में अध्यापकों के अधिकतर खाली पदों को भर दिया गया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में चंबा जिले में एक नई पहचान बनाई है और सरकारी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश के मामले में ये जिला प्रदेश भर में अग्रणी है।
3: चंबा जिला हमारे प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, पार्कलैंड क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर सर्वाधिक अगर शिक्षा की बात करेंगे, इनरोलमेंट के हिसाब से भी जो छात्रों की संख्या है सर्वाधिक हमारे चंबा जिला में है। हमने प्रयास किया है, आपकी जो नियुक्तियाँ वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई उसमें प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पर पोस्टों को भरा जाए। तो DGT मेडिकल नॉन मेडिकल की भारी संख्या में जो यहाँ पर आपके पद रिक्त थे, लगभग आपकी यहाँ पर जितने रिक्त पड़े पद थे पूरे हमारे चंबा जिला में भरे जा चुके हैं।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। चंबा में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की धूम है। मेले की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में बीती रात प्रसिद्ध लोक गायक कुलदीप शर्मा सहित अन्य कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति पर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। लोक संस्कृति, संगीत और पारंपरिक नृत्य से सजी इस सांस्कृतिक संध्या ने मिंजर मेले की रौनक को बढ़ा दिया है।

0: जिला बागवानी फसलों के लिए जाना जाता है और यहाँ सेब के अलावा प्लम, खुमानी और अन्य फलों की अच्छी पैदावार होती है। जिले में वर्तमान में 2,270 हेक्टेयर भूमि पर प्लम की खेती की जा रही है और यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 7,875 मीट्रिक टन प्लम का उत्पादन हो रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
1: कुल्लू जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाले फलों के उत्पादन के लिए भी देश भर में प्रसिद्ध है। सेब के अलावा प्लम की खेती भी जिला के हजारों किसानों और बागवानों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभरी है। फलों के अच्छे दाम मिलने से बागवानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। बंजार उपमंडल के प्रगतिशील बागवान ताराचंद ठाकुर ने लगभग 600 प्लम के पौधे लगाए। सरकार की सहायता से 16 लिफ्ट सिंचाई प्रणाली उपलब्ध हुई, जिसके माध्यम से उनके खेतों और बगीचों तक नियमित रूप से पानी पहुंच रहा है। सिंचाई सुविधा मिलने से पौधों की वृद्धि बेहतर हुई है और उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: राज्य के अनेक स्थानों पर बीती रात मानसून की वर्षा का क्रम जारी रहा और आज सुबह भी रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने आज राज्य के अनेक स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज सिरमौर जिले में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी वर्षा को देखते हुए प्रशासन ने नाहन उपमंडल में आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इस बीच शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि इस बार हिमाचल में मॉनसून की वर्षा सामान्य से कम रहने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष राज्य में मॉनसून की वर्षा सामान्य से 39% अधिक रही। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। भारी वर्षा व मौसम से जुड़ी खबर पर दैनिक जागरण लिखता है, सतलुज परियोजना में ट्रांसफार्मर खराब, शिमला में पानी की राशनिंग, शिमला में 10 स्थानों पर पेड़ गिरे, कई जगह भूस्खलन। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, चंबा में 28 घरों को नुकसान, कई वाहन दबे। शिमला शहर में संपत्ति कर से जुड़े समाचार को अमर उजाला ने सुर्खी दी है, शहरवासियों को संपत्ति कर की बढ़ी दरों से मिलेगी राहत, प्रस्ताव तैयार। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, 3 जनवरी 2022 के बाद नियुक्त हुए कर्मियों को नहीं मिलेगा उच्च वेतनमान। पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है, हिमाचल बोर्ड ने मार्च 2027 से 10वीं 12वीं परीक्षा का पैटर्न बदला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पर जारी रहेगी चर्चा। विधेयक में दोषियों को 10 वर्ष की कैद और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों को सेब सीजन से पहले सभी मुख्य सड़कों व संपर्क मार्गों को बेहतर बनाने के दिए निर्देश। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर भरे जा रहे हैं अध्यापकों के खाली पद। सरकारी स्कूलों में दाखिले के मामले में चंबा जिला अग्रणी। चंबा में अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की धूम, तीसरी सांस्कृतिक संध्या में लोक संस्कृति और पारंपरिक नृत्य ने बढ़ाई मेले की रौनक। और प्रदेश के अनेक स्थानों पर आज भारी वर्षा की संभावना, सिरमौर जिले में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, नाहन उपमंडल में आज शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

तो इसी गूंज के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारी बातचीत हो रही थी आज के दिन के बारे में, यानी हम सभी जानते हैं आज है 29 जुलाई और इतिहास की हम थोड़ी सी बात कर रहे थे। तो बहुत सारे महान व्यक्तियों के जन्म आज के दिन हुए हैं और बहुत सारे व्यक्तियों के जो महान रह चुके हैं उनकी निधन भी आज के दिन ही हुए हैं। तो JRD टाटा और संजय दत्त का जन्म आज ही के दिन हुआ था, जबकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अरुणा आसिफ अली का निधन आज ही के दिन हुआ था। अब जन्मे व्यक्तियों की बात हम करें तो भारत के महान उद्योगपति टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष, जिनका जन्म 29 जुलाई 1904 को हुआ था, और संजय दत्त लोकप्रिय भारतीय फिल्म अभिनेता, इनका जन्म आज ही के दिन यानी 29 जुलाई 1949 को हुआ था। बोनीतो मुसैलिन इटली के तानाशाह, इनका जन्म भी 29 जुलाई 1883 को हुआ था। ये तो वो व्यक्ति थे जिनका जन्म आज के दिन हुआ था। अब जिनकी व्यक्तियों की मृत्यु आज के दिन हुई थी, जिनका निधन आज के दिन हुआ था, वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महान बंगाली शिक्षाविद और समाज सुधारक। इनका मृत्यु 1891 को आज ही के दिन हुई थी। और अरुणा आसिफ अली, भारत के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, इनका निधन 1996 में आज ही के दिन हुआ था। विंसेंट वैन गो, नीदरलैंड के मशहूर चित्रकार, इनका निधन भी आज ही के दिन 1890 को हुआ था। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियों के साथ साथ थोड़ा सा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी करते हैं मस्ती, थोड़ा सा करते हैं धमाल। तो आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

जी हाँ बिल्कुल श्रोताओं, कभी कभी तो हमारा भी मन नहीं लगता है, हमारा जी भी नहीं लगता है अपने श्रोताओं के बिना। तभी तो चले आते हैं हम हर दिन आपसे मिलने और ढेर सारी जानकारियाँ आपके साथ साझा करने। श्रोताओं, एक आपका प्यार ही तो है कि हम खींचे चले आते हैं आपसे मिलने के लिए। तो यूं ही हमारा प्यार और दोस्ती बनी रहे, इसी दोस्ती की मजबूती के साथ कार्यक्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा स्थानीय जानकारियाँ आपके साथ साझा करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड 2026 के सेमीफाइनल के लिए चयनित होने पर हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग को बधाई दी है। राज्य अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कुलदीप कुमार दीवान, सदस्य दिग्विजय मल्होत्रा, डॉक्टर विजय डोगरा तथा कुमारी शालिनी जम्बाल ने आज यहाँ मुख्यमंत्री से भेंट की तथा इस उपलब्धि के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने बताया है कि आयोग को अनुसूचित जातियों का कल्याण विषय पर उल्लेखनीय कार्य के लिए सेमीफाइनल लिस्ट के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी तथा स्कोच अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियों के साथ साथ फिर से आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप रेडियो धर्मशाला के साथ।

श्रोताओ, बिल्कुल सुबह सुबह अल्लाह को, ईश्वर को, परमात्मा को याद करना चाहिए। उनकी कृपा हम सभी पर बनी रहती है और उनके बिना तो ज़िंदगी में हमारा गुजारा भी नहीं है। और थोड़ा सा अपनी बातों और जानकारियों को और बढ़ाते हैं और सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की आप सभी को मुबारकबाद देते हैं। श्रोताओ, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह पर्व महर्षि विद्या व्यास के जन्म दिवस और गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने का विशेष दिन होता है और साथ ही साथ इस दिन का महत्व भी है। उसके बारे में भी हम आपके साथ जानकारियाँ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

जी हाँ श्रोता, और डांस तो बिल्कुल जीवन में ज़रूरी होता है। डांस से फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में आती है और बहुत सारे रोग भी हमारे शरीर से आगे बढ़ते हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में एक बार फिर से सभी श्रोताओं का स्वागत है और हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी बातचीत हो रही थी श्रोताओं, गुरु पूर्णिमा को लेकर। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और इस दिन आदि गुरु महर्षि व्यास का जन्म हुआ था। ये हमारे बहुत सारे श्रोता जानते भी हैं, और जो हमारे श्रोता टीचर हैं, जो पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं, वो तो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि एक गुरु का महत्व विद्यार्थी जानते हैं कि क्या होता है उनके जीवन में। तो श्रोता, महर्षि वेद व्यास के चारों वेदों का वर्गीकरण किया है और महाभारत व पुराण की रचना भी की गई है। इसके साथ साथ श्रोताओं, गुरु शब्द का अर्थ क्या है, जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं गुरुओं का योगदान रहा है और गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान जो है जीवन भर हमारे काम आता है और जीवन में हम आगे भी बढ़ते हैं। इस दिन शिष्य जो है बहुत अपने गुरुओं को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उनका थैंक्स करते हैं, और साथ ही साथ जो है गुरु के चरण छूकर विद्यार्थी उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। तो श्रोताओं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां हमें और भी आपके साथ साझा करनी है। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: चलो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से हम वापस आ चुके हैं और आपके साथ आपकी दोस्त सुमन। तो एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि 10 बजे हम लाइव फ़ोन इन के ज़रिए आपसे बातचीत कर सकते हैं, और बातचीत करने के लिए हम थोड़ा सा आपको बता दें कि आज बाघ दिवस है और बाघ दिवस पर भी हम बातचीत करेंगे। थोड़ा सा मौसम के अनुकूल भी बातचीत करेंगे क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो जानेंगे अपने श्रोताओं से कि किस तरह से बरसात के मौसम में अपना ध्यान और ख्याल रखते हैं, और इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ फिर से हम वापस आते हैं। और हम गुरु पूर्णिमा की बातचीत कर रहे थे श्रोताओं, तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म दिवस मनाया जाता है। उन्हें सम्मान देने के लिए आज के दिन हम इसे मनाते हैं, और इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और शास्त्रों में कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास ने चारों वेदों की रचना की थी, और इसी कारण से उनका नाम वेद व्यास पड़ा था। भारत में प्राचीन काल से ही गुरु की भूमिका काफ़ी अहम रही है। प्राचीनकालीन सभ्यता हो या आधुनिक दौर, समाज के निर्माण में गुरुओं की भूमिका को अहम माना जाता है, और भूमिका को सरल और गूढ़ रूप से संत कबीरदास ने अपने दोहे के माध्यम से भी दर्शाया है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
1: चली गई, आ गई, उधर करो, फिर चली गई यार, आ गई, चली गई।

जी हाँ श्रोताओ, लंदन तो ठुमक ही रहा होगा, लेकिन हमारे श्रोता भी जरूर ठुमक रहे होंगे। जब अपनी पसंद का प्यारा सा गीत लगा हो तो काम करते करते कई बार मन करता है थोड़ा सा झूम लिया जाए, थोड़ा सा गा लिया जाए, थोड़ा सा ठुमक लिया जाए। जी हाँ श्रोताओ, वैसे भी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। जब हम खुश रहते हैं तो बहुत ही अच्छा हम सभी को लगता है और लगना भी चाहिए। ज़िंदगी में आए हैं तो हमेशा हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। और इसी मुस्कुराहट के साथ ही श्रोताओ, एक बार फिर से आपको बता दूं कि सुबह के 10 बज चुके हैं और हम जो है आपको ये बता रहे थे कि आप लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। और हमने पहले भी आपको बताया, बातचीत करने के लिए हम मौसम की भी बातचीत करेंगे। और थोड़ा सा आज के दिन हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, तो बाघ दिवस की भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। आप हमारे साथ साझा करना और इन्हीं जानकारियों के साथ थोड़ा सा हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि विषय हमारे पास अभी है बाघ दिवस का, जिसे हम आज यानी 29 जुलाई को मना रहे हैं। बाघ दिवस का मुख्य उद्देश्य बाघों के अवैध शिकार, प्राकृतिक आवास के नुकसान को रोकना और उनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर सिमिट में हुई थी। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ, जानकारी तो हमने आपके साथ साझा कर दी है और हमें इंतज़ार है आपकी फ़ोन कॉल का। साथ ही साथ मुझे लग रहा है आज हमारे श्रोता कुछ ज़्यादा व्यस्त हैं, इसलिए हमसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन श्रोताओं का कामकाज के साथ साथ हमारे साथ जुड़ना भी ज़रूरी है। दोस्ती को बनाए रखने के लिए बातचीत करना ज़रूरी होता है। तो जुड़िए हमारे साथ और अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोताओं, लाइव में आपके साथ जुड़ने की एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैं नंबर ही बताना आपको भूल गई। तो श्रोताओं, खैर कोई बात नहीं, आप अभी जुड़ सकते हैं, अभी हमारे पास बहुत सारा समय है। उसके लिए आपको नंबर बता दूँ, 7018117091। एक बार फिर से नंबर श्रोता नोट कर लें, 70181717091। तो ये है हमारे स्टूडियो का नंबर, आप जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमारे साथ बातचीत अपनी साझा। और बातचीत के साथ साथ हम फिर से अपने विषय की ओर आते हैं, और हमारी बातचीत हो रही थी बाघ दिवस के बारे में। श्रोता, बाघ हमारे जंगली जानवर हैं और आज के दिन का मुख्य उद्देश्य बाघों की घटती संख्या रोकना और उनके आवास सुरक्षित करना है। साथ ही साथ भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में दुनिया के कुल जंगली बाघों का लगभग 70% हिस्सा पाया जाता है। बाघ संरक्षण के महत्व की ओर थोड़ा सा हम रुख करें तो बाघ जो है स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र और खाद्य श्रृंखला का प्रतीक है। आवास सुरक्षा भी बेहद ज़रूरी है। जंगलों में बाघों के सुरक्षित रहने के लिए पूरा वन विभाग और प्राकृतिक वातावरण सुरक्षित रहता है। जागरूकता की बात करें श्रोताओं, तो ये दिन लोगों को अवैध शिकार के खिलाफ एकजुट होने और वन्य जीवों के प्रति संवेदना रखने की प्रेरणा देता है। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों को थोड़ा सा देते हैं विराम और श्रोताओं की नज़र करते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। लगता है आज हमारे श्रोता ज़्यादा व्यस्त हैं। कोई बात नहीं, हम इंतज़ार में बैठे हैं। कहते हैं सबर का फल मीठा होता है, हो सकता है हमें भी वो मीठा फल नसीब हो जाए। और इसी बातों के साथ हम फिर से अपने कार्यक्रम में वापिस आते हैं। और बातचीत हमारी हो रही थी बाघों को लेकर। कई ऐसे क्षेत्र भी हैं श्रोताओं जहाँ अभी भी बाघ पाए जाते हैं, और बाघों के साथ अनुभव करना एक बड़ा व्यवसाय है। पर्यटक अक्सर बाघों के शावकों के साथ सेल्फी लेने या वयस्क बाघों के प्रदर्शन देखने के लिए पैसे देते हैं, और ये सभी गतिविधियाँ शोषणकारी हैं और इसमें शामिल जानवरों के लिए भी हानिकारक होती हैं। श्रोताओं, उपयोग के लिए बाघों का अक्सर अवैध शिकार या पालन पोषण किया जाता है। सबसे बड़ी बिल्ली प्रजाति होने के नाते एक वयस्क बाघ की कई बड़ी हड्डियां होती हैं, जिसे पीसकर औषधीय उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि बाघ की हड्डियों में कई उपचारिक गुण होते हैं, और इस उद्देश्य के लिए पाले जाने वाले जानवरों को क्रूर परिस्थितियों में रखा जाता है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारियाँ भी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और हम बात कर रहे थे बाघ के बारे में। श्रोता, बाघ सिर्फ एक जानवर नहीं है बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक धरोहर और देश का राष्ट्रीय जो है पशु भी है। और साथ ही साथ इस खास मौके पर हम टाइगर से तो बात करेंगे, लेकिन एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हेलो।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग जी, कैसी हैं आप?
1: बढ़िया मैम, आप सही है?
0: मैं अच्छी हूँ। आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं इंदू सिद्धवाड़ी से।
0: अच्छा जी, इंदु जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। तो बहुत दिनों से हम भी चाह रहे थे कि आपसे बातचीत की जाए और लगातार आपके मैसेज भी हमारे तक पहुंचते रहते हैं। आप कार्यक्रमों की सराहना करती हैं तो हमें कहीं ना कहीं खुशी मिलती है, और जब हमारे श्रोता हम सब जुड़ते हैं ना तो उनका प्यार भी झलकता है। तो आज आप क्या बातचीत करना चाहती हैं और कैसा आपका ये बरसात का मौसम चल रहा है इंदु जी?
1: अच्छा चल रहा है मैम, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है जैसे बरसात कुछ अलग ही है।
0: जी कैसे, अलग कैसे है? हर बार बरसात होती है।
1: हाँ जी, होती है, लेकिन इस बार जैसे धर्मशाला में मैंने इतने सालों में कभी नहीं मौसम ऐसा चेंज देखा है। जैसे बारिश हट रही है तो गर्मी महसूस हो रही है ना,
0: वो तो ऐसा पहले नहीं, चिपचिपाहट वाली गर्मी होती है बरसात
1: नहीं, पर पहले इतने सालों में नहीं हुआ। इधर मेरी शादी को भी 16-17 साल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं देखा। मतलब बल्कि हम तो स्वेटर वगैरह निकाल लेते थे बरसात के दिनों में
0: जी,
1: लेकिन इस टाइम जो मतलब इस बार जो है वो थोड़ा मौसम चेंज है।
0: जी। और मौसम में क्या सावधानियां बरतती हैं आप?
1: मैम पूरी सावधानियां बरतनी पड़ती है मौसम में।
0: कैसे कैसे थोड़ा सा बताएं हमारे श्रोताओं को, किस तरह से आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखती हैं?
1: मैम बारिश में जितना हो सके हम कम ही जाना मतलब करते हैं, क्योंकि आउटिंग जो होती है वो कम ही कर देते हैं। जैसे पता है कहीं निकलने से पहले मौसम का हाल चाल देखना पड़ता है ना।
0: जी, बिल्कुल सही बात कही आपने कि बारिश के मौसम में थोड़ा सा हमें बाहर जाने से परहेज करना चाहिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए और फिर बरसाती मौसम का आनंद लेना चाहिए। बहुत अच्छा लगा इंदु जी आपसे बातचीत करके।
1: कहीं भी जाए तो रेन कोट भी साथ में होना चाहिए अपना, या छाता तो जरूर होना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अपना पूरा बंदोबस्त करके ही हमें घर से बाहर निकलना चाहिए। और आपने हमारे साथ अपनी दिल की बात, अपनी जानकारी साझा की और किस तरह से आप अपना ख्याल रखती हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत, तो आप इसी तरह से सुनते रहिए हमारे कार्यक्रमों को। धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।

श्रोता इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो श्रोता हमारे श्रोता भी हमारे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं। उसके लिए एक बार फिर से आपको अपना नंबर बता दूं, हमारा नंबर है 70181 17091 यानी 7018117091। तो श्रोता ये है हमारे स्टूडियो का नंबर और नंबर के साथ फिर से हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हम बाघ दिवस की बात कर रहे थे। तो श्रोताओं बाघ जो है पीली काली धारियों वाला होता है, इसे देखकर ही हम पहचान जाते हैं और हर कोई अपनी शरीर की बनावट से ही पहचाना जाता है और एक डर भी हमारे मन में बाघ को देखकर होता है। हम डर जाते हैं उसे देखकर क्योंकि एक खौफ हम सभी के मन में शुरू से ही रहता है धारियों वाला बाघ। ऊपर से फर इसके शरीर पर होते हैं और बाघ के बाल भी बहुत ज़्यादा होते हैं और इसकी आँखों की चमक देखते ही एक डर हमारे जीवन में आ जाता है और थोड़ा सा हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। ये जो है श्रोतो, थोड़ा सा हमें अपना ध्यान और ख्याल रखना पड़ता है। इसी ध्यान और ख्याल के साथ कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम बाघों की बात आज कर रहे थे क्योंकि आज के दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मना रहे हैं। श्रोताओ, बिल्लियों की बात की जाए तो जहाँ बिल्लियाँ पानी से दूर भागती हैं वहाँ बिल्लियाँ प्रजाति का ये सबसे बड़ा सदस्य पानी का शौकीन होता है। रॉयल बंगाल टाइगर न केवल पानी में घंटों आराम करना पसंद करता है बल्कि बेहद कुशल तैराक भी होता है। ये शिकार की तलाश में 5 से 6 किलोमीटर तक की नदी आसानी से तैर कर पार कर लेता है। और इसकी दहाड़ की बात करें तो 4.3 किलोमीटर दूरी तक इसकी दहाड़ गूंजती है। जब एक व्यस्क बंगाल टाइगर पूरे शवाब पर दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ लगभग 3 किलोमीटर दूर तक साफ सुनी जा सकती है। ये दहाड़ जंगल में दूसरे जानवरों को चेतावनी देने और अपने इलाका तय करने का काम करती है। तो श्रोतो, और भी जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा रुकते हैं कार्यक्रम में और इन्जॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम वापस आ चुके हैं और हमारी बातचीत आज बाघ दिवस के बारे में हो रही थी। तो हमारे श्रोता सभी जानते हैं कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मना रहे हैं। तो बाघ की बात की जाए तो ये शाम और रात के समय शिकार करना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि रात के अंधेरे में इनकी देखने की क्षमता इंसान के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा तेज़ हो जाती है और आँखों में रोशनी की रिफ्लेक्शन करने वाला एक खास परत होती है जो अंधेरे में इनकी आँखें जो है चमकती हुई दिखती हैं। और साथ ही साथ श्रोता, जो बाघ होते हैं लगभग 200 से 300 किलोमीटर तक वजनी होने के बावजूद ये रॉयल बंगाल टाइगर 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकता है। हम सभी ने उनकी दौड़ देखी है कि कितनी तेज़ी से ये दौड़ता है। इतना ही नहीं, अपने पैरों की मांसपेशियां इतनी मजबूत हैं कि ये लंबी छलांग भी लगाता है और दूर तक छलांग लगाता है। बाघ किसी झुंड में रहना पसंद नहीं करता है, वह अपने शावकों के साथ भी रहना पसंद करता है। और एक नर बाघ का अपना दायरा होता है श्रोताओं, और साथ ही साथ जो 60 से 100 वर्ग किलोमीटर तक फैला होता है। वे अपने इलाके की सीमाओं की और पेड़ों की छाल तथा पंजों के निशानों से चिन्हित करता रहता है। तो श्रोताओं, ये तो हमारे जानवर हैं, इनके हमें संरक्षण करना है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जंगली जानवरों को मार कर शिकार करके उनकी खाल को अपने घर पर लगाते हैं और अपने जो है ड्राइंग रूम की शोभा को बढ़ाते हैं। तो श्रोताओं, इस तरह से हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम अपने फ़ायदों के लिए जंगली जानवरों को मारें और सजावट के लिए उन्हें अपने घर पर लगाएं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम पल भर के लिए सोचें कि हमें कोई मारता है तो हमें भी उतना ही दर्द होता है। इसलिए हमें जंगली जानवरों को मारने की बजाय उनका संरक्षण करना चाहिए ताकि आने वाले उनकी प्रजातियों को हमारे बच्चे भी देख पाए और इन्हें लुप्त होने से इनकी प्रजातियों को हमें बचाना है। इसी के साथ श्रोताओं, फिर से हम कार्यक्रम की ओर रुख करते हैं और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी के रेडियो सेट पर चल रहा है गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप अपने होस्ट एंड दोस्त सुमन के साथ। तो श्रोताओं, हम कार्यक्रम में बाघ के बारे में बात कर रहे थे। जंगली जानवर बाघ को किसने नहीं देखा है, सबने नाम सुना है और एक डर एक खौफ सभी के मन में है। अब बाघ की तो हमने बात की, थोड़े से इसके बच्चों के बारे में बात करें श्रोता। तो जब बाघ के बच्चे पैदा होते हैं तो वो पूरी तरह से ब्लाइंड होते हैं, यानी पूरी तरह से अंधे होते हैं। शुरुआत में 1 से 2 हफ्ते तक वे कुछ नहीं देख पाते हैं और पूरी तरह से अपनी माँ की गंध और दूध पर निर्भर रहते हैं। यही कारण है कि शुरुआती महीनों में शिकारियों से बचाना माँ के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। और फिल्मों में बाघ को जितना हम आसानी से शिकार करते दिखाया जाता है, हकीकत में श्रोताओं ऐसा नहीं होता है। हकीकत में एक डर एक खौफ हमारे मन में होता है। एक बाघ अपने 10 में से केवल 1 या 2 शिकार अभियानों में ही सफल हो पाता है। इसका धैर्य और रणनीति इतनी ज़बरदस्त होती है कि वे हार नहीं मानता है। हर किसी को श्रोता अपनी जान प्यारी होती है, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है या फिर बचता बचाता है। अगर हमें कोई मारने की कोशिश करे तो हम भी अपना बचाव पूरी तरह से करते हैं। इसलिए बाघ को जब मारने के लिए शिकारी जाते हैं तो वो भी अपना जोर पूरी तरह से अपने आप को बचाने के लिए लगा देता है। खैर, इंसान का इतना खौफ नहीं होता है जितना जो है बाघ का खौफ इंसान को होता है। और बाघ एक बार झपट पड़े इंसान पर तो पूरी तरह से उसको मार कर या खा कर ही दम लेता है। तो अपने आप को थोड़ा सा जानवरों से भी बचा कर रखें। वैसे जानवरों से हमें प्यार करना चाहिए और इन्हें जो है इस तरह से शिकार भी नहीं करना चाहिए और ना ही किसी तरह से हानि पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों के साथ फिर से हम रुख करते हैं गीत संगीत की और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला बहुत प्यारा सा कार्यक्रम होता है। इसमें ढेर सारे गीत संगीत हम इस उम्मीद के साथ लेकर आते हैं कि हमारे श्रोताओं को पसंद आए, और खैर उनको पसंद आते भी हैं, और जानकारियाँ भी हम ढेर सारी लेकर आते हैं। उन्हीं जानकारियों में कुछ स्थानीय जानकारियों की ओर थोड़ा सा बढ़ें तो भारत सरकार केंद्र द्वारा नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कॉलेज ऑडिटोरियम में किया गया। प्रतियोगिता में नुक्कड़ नाटक समूह तथा एंकल गायन, रील मेकिंग, स्लोगन लेखन, पेंटिंग, वाद विवाद, डेक्लमेशन, संगीत तथा नृत्य सहित अनेक रचनात्मक विधाओं के माध्यम से युवाओं को नशामुक्त समाज के निर्माण का संदेश देने का प्रयास किया गया। इस प्रतियोगिता में डाइट कांगड़ा स्थित धर्मशाला के DL&D प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में प्रशिक्षुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियों के साथ साथ फिर से रुक करते हैं गीत संगीत की ओर, और आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत को। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोतो, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला में आज हम बात कर रहे थे टाइगर की, टाइगर का नाम लेते एक डर, एक खौफ हमारे मन में जाग जाता है। और श्रोतो, भारत में इनके संरक्षण की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर, एक समय था जब शिकार और जंगलों की कटाई का कारण भारत के बाघों की गिरती बहुत संख्या थी, लेकिन 1973 में शुरू हुई प्रोजेक्ट टाइगर और हमारे जांबाज फॉरेस्ट गार्ड की मेहनत की बदौलत आज भारत में बाघों की संख्या में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। आज भारत पूरी दुनिया के लिए वाइल्ड लाइफ कंजप्शन की एक मिसाल बन चुकी है। रॉयल बंगाल टाइगर सिर्फ हमारे जंगल की शान नहीं है, बल्कि वे पूरे इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखने वाला प्रहरी है। अगर जंगलों में बाघ सुरक्षित है तो इसका मतलब है कि पूरा जंगल और उसमें मौजूद नदियाँ, पेड़ पौधे और अन्य जीव भी सुरक्षित हैं। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में आपको सुनवा देते हैं एक और प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

शादो इसी गीत के साथ हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। आज के कार्यक्रम में हमने किया है आपके साथ ढेर सारी जानकारियां साझा, उम्मीद है आपको पसंद भी आई होंगी। तो अब चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए और वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी है।

0: फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठे हैं?
3: तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
4: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
5: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
6: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
7: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है। तुम 5,000 पूछ रहे हो?
6: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
7: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
6: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
7: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
6: कसम खाओ।
7: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
6: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा?
8: मेरा ही रहेगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे, इस घर में और रहते ही कौन
9: है। भारी मिस्टेक हो गया सर।
7: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
10: गजब डूबी बाजा।

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारी से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात दे करके उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए। वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठे हैं?
1: पता नहीं उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
5: गजब टूटी बाजा।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ हर हफ्ते आप सभी के लिए लेकर आते हैं खास जानकारियां खास कार्यक्रम के साथ। जी दोस्तों, तो आप सभी सुनते हैं कार्यक्रम मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। तो इस कार्यक्रम की एक और कड़ी, एक और जानकारी को लेकर आप सभी के साथ जो है वो हम जुड़ने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में आप सभी जुड़ते हैं रुचिका के साथ, और साथ ही हमारे खास जो मेहमान जुड़ते हैं
1: प्रियाशी
0: जी। तो स्वागत है मैम आपका इस बहुत ही खास बातचीत में।
1: थैंक यू सो मच रुचिका।
0: तो कैसे हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं।
0: और उम्मीद करते कि हमारे दोस्त भी अच्छे हैं और मैं भी अच्छी
1: हूँ। बिल्कुल
0: जी। तो मैम, जैसे जैसे मौसम में बदलाव आते हैं, जैसे सीजनली अगर हम सब्जियों की बात करें तो वो भी सीजनली होती हैं। बात करें थोड़ा सा हम खाने की, मेरा खाना किसको पसंद नहीं होता, सभी को पसंद होता है, सभी खाने के जो है मज़े लेते हैं और अलग अलग शॉप्स को ट्राई करते हैं, रेस्टोरेंट्स को ट्राई करते हैं कि कहाँ बेहतर खाना मिल जाएगा।
1: देखिए, हमें लगता है बदलते मौसम के साथ जो सब्जियों में, जो सीजनल वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स में बदलाव आता है, उसका एक तरफ एक प्रकार से मानसिक स्तर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम लोग सीजनल वेजिटेबल्स की जगह ऐसी वेजिटेबल्स या ऐसा खान पान लेने लगे, ऐसी चीज़ें ग्रहण करने लगे जो हमारे सेहत के लिए अच्छी ना हो, तो उससे हमारे सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ता है। क्योंकि हमारा जो फिजिकल हेल्थ है और जो मेंटल हेल्थ है, वो सारे हमारे जो अंदर के गट बैक्टीरियाज हो गए, या फिर हमारे जो अंदर हार्मोन्स हो गए, जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए, उन सब से आपस में कनेक्टेड होता है। उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि एक व्यक्ति की हेल्थ कैसी रहती है। इसीलिए डाइट बिकम समथिंग विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ।
0: जी, तो अभी दोस्तों हमने खाने की बात की है कि किस तरह से जो है खाना भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जैसे कि मैम ने अभी बताया। तो मैम, अक्सर हम सिर्फ खाने पे ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ें हम देखते नहीं हैं कि ये हमारे चाहे मानसिक हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, चाहे हमारी फिजिकल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है। कई बार क्या होता है कि पेट भर जाता है लेकिन आँखें नहीं भरती हैं। तो एक कहते हैं ना कि ओवर ईटिंग, तो बिल्कुल दोस्तों ओवर ईटिंग की हम बात कर रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि जो मतलब कि हम तरह तरह का डिफरेंट डिफरेंट खाना देखते हैं तो मन करता है कि सारा ही खाना हम खा लें, लेकिन पेट में उतनी जगह नहीं होती। लेकिन तो अक्सर हम यही सुनते हैं, ज़्यादातर अगर हम खाने की बात करें तो ओवर ईटिंग का ही हमारी जुबान पर जो है नाम आता है। लेकिन एक जो हम बात करें ईटिंग डिसऑर्डर की, तो ये हम किस तरह से समझ सकते हैं, असल में ये ईटिंग डिसऑर्डर होता क्या है, इसे हम कैसे, अगर हम साधारण से शब्दों में अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें तो हम कैसे इसे समझ सकते हैं?
1: देखिए, खाना तो सबको ही बहुत पसंद होता है
0: जी,
1: लेकिन जब किसी व्यक्ति के जीवन में खाने से संबंधित स्ट्रेस डेवलप होने लग जाए, बी एट कि वो खाना ज़्यादा खाना चाहे वो एक प्रॉब्लम बन जाए, या फिर वो खाना कम खाना चाहे वो एक प्रॉब्लम बन जाए, या फिर बोलिए कि हम खाना खा भी रहे हैं और हमें फिर दिक्कत भी हो रही है, तो मतलब खाना खाना तो चाहते हैं, उसकी अर्ज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम वो खाकर खुश नहीं हो रहे हैं, हम उसे खाकर और दुखी हो जा रहे हैं। तो बेसिकली जब खाना और स्ट्रेस साथ में एक्यूमुलेट हो जाए, साथ में एसोसिएट हो जाए, तब हम उसको सोच समझ पाती है कि अच्छा, ये एक प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है। इसमें अगेन कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है, जैसे कि खाने की मात्रा या जो स्ट्रेस है या उनका जो इम्पैक्ट है, चाहे वो खाना खाना हो ना खाना हो, या फिर जो स्ट्रेस आ रहा है उसके साथ, उनका जो इम्पैक्ट है वो एक पर्सन के सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ पर इम्पैक्ट करने लग जाए। उसके साथ साथ अगर उनको उस चीज़ से जो स्ट्रेस है वो लगातार बना हुआ है, खाने की मात्रा जो है या खाना की जो फ्रिक्वेंसी है या ड्यूरेशन है या जो उसकी इंटेंसिटी है, वो आम लेवल से कम या आम लेवल से ज़्यादा हो जाए, और ये चीज़ रिकरेंटली प्रेजेंट रहे। जैसे होता है कि कभी कभी हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग को बहुत इच्छा होती है खाना खाने की, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा
0: जी,
1: वंस इन अ वाइल वो चीज़ करी गई है, इट्स टोटली ओके, सब अंडरस्टैंडेबल है, बट अगर वही चीज़ बार बार होने लगे, डेली लेवल पर होने लगे, तब वो चीज़ कंसिडर करी जाएगी या समथिंग प्रॉब्लमेटिक। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कुछ रुचिका जिनसे हम समझ सकते हैं अच्छा कि एक व्यक्ति की जो ईटिंग हैबिट है अब वो ईटिंग डिसऑर्डर में तब्दील हो रही है।
0: तो मतलब कि जैसे बीमारियों की ही बात करें, रिलेट कर सकते हैं एक तरह से हम, कि जब एक आधी बार अगर हम उसे फेस करें तो नॉर्मल है, लेकिन जब बार बार वो हमें चीज़ परेशान करना शुरू कर दे एक तरह से, या तो जैसे हम खाने की बात करें तो कई बार ऐसा होता है जब बच्चों की बात करें खास करके, तो जो हॉस्टल्स में रहते हैं, जो बाहर अपनी स्टडी पूरी कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि मन डेली ही जब एक बार बाहर का खाना खा लिया तो फिर डेली मन ना करे बनाने का, तो वो बाहर का खाना जो है एक तरह से वो डिपेंडेंसी जो हो जाती है उसको हम उसमें कंसिडर कर सकते हैं या वो अलग वे में है।
1: वो अलग है, उसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि ईटिंग हैबिट इज़ नॉट गुड। ईटिंग की हैबिट्स भी होती हैं, पर जब हम लोग डिसऑर्डर की बात करते हैं ना रुचिका, तो वो बहुत एक्सट्रीमिटी के बारे में बात करी जा रही होती है।
0: तो ये मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ मैम कि जब हम इसे डिसऑर्डर का नाम दे रहे हैं तो वो एक्सट्रीमिटी मतलब कि किस
1: क्या
0: तरह
1: है?
0: से हम इसे
1: देखिए,
0: डिफ्रेंशिएट
1: स्ट्रेस इज अ
0: करेंगे।
1: वेरी बिग फैक्टर हियर। व्हेन समबडी हु गोज आउट डेली एंड हैव फूड दैट विल गिव देम जॉय, वो उन्हें खुशी देगा,
0: जी
1: वो उन्हें स्ट्रेस नहीं देगा। तो क्योंकि स्ट्रेस प्रेजेंट ही नहीं है तो वो डिसऑर्डर में माना ही नहीं जाएगा।
0: ओके मतलब कि जो हमें एक तरह से टेंशंस में लेके जाए सोचने।
1: सोचने भी मजबूर कर दे, हमारे दिमाग में रिकरेंटली ये थॉट आता रहे कि हमने ज़्यादा खा लिया, हमने ज़्यादा खा लिया, हमने ज़्यादा खा लिया, हमने ज़्यादा खा लिया। अब उसको कंपनसेट करने के लिए या उस गिल्ट से अपने आप को रिलीज करने के लिए देन द पर्सन वुड अटेम्प्ट डिफरेंट थिंग्स, एक्सरसाइज करेगा, इतना दौड़ेगा, फिर वो अपने इनटेक्स को लेके बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। जब तक आप, अब जैसे लोग जो जिम जाते हैं वो भी अपने इनटेक को लेके काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं,
0: जी
1: लोग एक एक ग्राम को कैलकुलेट कर करके खाते हैं, उसमें बुराई नहीं है, वो एक डिसिप्लिनरी ईटिंग है, वो उनकी एक लाइफस्टाइल का पार्ट है। बट अगर यही पार्ट उनको स्ट्रेस देने लग जाए, उनको उनकी नींद उड़ा दे, वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें उनका मन ही ना लगे, उसमें उनका ध्यान ही ना लगे, उनका अटेंशन इसी चीज़ के अराउंड ही घूम रहा है कि मैंने इतनी कैलोरीज खा ली, तब वो चीज़ डिसऑर्डर का रूप ले रही है। तो जो व्यक्ति, जो बच्चा डेली बाहर का खाना खा रहा है, वो तो उसको तो जॉय मिल रहा है,
0: इंजॉय
1: उसमें
0: मिल रहा है
1: वो उसको
0: बिल्कुल।
1: एंजॉय कर रहा है, उसको उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसके ध्यान में भी नहीं है कि आज मैंने क्या क्या खा लिया, ये मुझे नुकसान भी दे सकता
0: जी
1: है ना।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: इसीलिए उसको हम लोग पुअर ईटिंग हैबिट्स बोलेंगे, उसे हम लोग ईटिंग डिसऑर्डर का नाम नहीं दे सकते।
0: जी बिल्कुल दोस्तों। तो आप सभी भी इस बात को बहुत अच्छे से जो है रिलेट कर पाए होंगे, क्योंकि अक्सर हमारे मन में बातें एक तरह से आ ही जाती हैं कि कई बार होता है हम बच्चों की ही बात नहीं करें, बड़ों के साथ भी ऐसा होता है, जब हम बाहर एक बार खाने के लिए मन करता है तो फिर वो डेली भी कई बार रूटीन बन जाती है। तो मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि जो खाना हमें एक तरह से स्ट्रेस ना दे, कोई टेंशन ना दे, कोई परेशानी ना दे, तो उसे हम डिसऑर्डर का नाम नहीं देंगे। जो खुशी दे वो हमारे लिए एक तरह से बैड हैबिट, या एक बोल सकते हैं कि लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है उससे, अनहेल्दी फूड जो है वो हमारे अंदर जा सकता है। लेकिन हाँ, डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं तो डिसऑर्डर वहाँ पे हम काउंट करेंगे जहाँ की जो खाना हमें एक तरह से बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन्स में लेके चला जाए, गिल्ट में लेकर चला जाए, और हम बस पूरा टाइम उसी के बारे में सोचते रहें। तो ये चीज़ें प्रेफर करती हैं डिसऑर्डर को। खास करके हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे दोस्तों इसके बारे में कि क्या क्या इसके लक्षण रहते हैं या किस कितने प्रकार के ये रहता है,
1: बिल्कुल
0: तो उसके बारे में हम जरूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गीत के ब्रेक के बाद आइए फिर से अपनी बातचीत की ओर आप सभी को लेकर चलते हैं। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। तो बहुत ही खास बातचीत कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि खाने की डिशेस जो होती हैं बहुत प्यारी प्यारी सी होती हैं, बहुत टेस्टी टेस्टी सी होती हैं, और जब भी खाने की बात चलती है तो मुंह में पानी आ ही जाता है, और जब डिशेस का नाम आ जाए तब तो मन करता है कि हाथों में ही आ जाए, तो क्या बात है। तो बहुत इस खास बातचीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। तो मैम, जैसे कि हमने बात की कि ईटिंग डिसऑर्डर जो है हम किस तरह से मानते हैं या समझ सकते हैं इस चीज को, अब हम बात करें क्या ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है ये सिर्फ हमारे खान पान या वजन से जुड़ी एक समस्या है, या फिर इसके पीछे एक गहरा मानसिक प्रभाव जो है वो हमारी हेल्थ से जुड़ा है, स्वास्थ्य से जुड़ा है।
1: डेफिनेटली इसके पीछे साइकोलॉजिकल कॉज है। देखिए, खाना हमारे कल्चर में बहुत सिग्निफिकेंस रखता है, सिर्फ सर्वाइवल के एस्पेक्ट से ही नहीं लेकिन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी। फूड हैज़ ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद लव ऑफ अ मदर। हम जब कभी किसी के यहाँ एज गेस्ट भी जाते हैं तो भी वो बोलते हैं, नहीं, आप एक रोटी और खा लीजिए, एक और ले लीजिए,
0: जी
1: तो उनसे उनका प्यार झलकता है। ऐसे ही बचपन से ही जब एक बच्चा पैदा होता है तब से वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है फॉर देयर सर्वाइवल। एंड फूड या बेसिकली जो ब्रेस्ट मिल्क है, दैट इज समथिंग विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड फ्रॉम द मदर। मदर बिकम्स अ सिम्बोलिज्म ऑफ फूड, समवन हु इज़ गोइंग टू प्रोवाइड मी फूड, एंड फूड इज़ वाइटल फॉर द सर्वाइवल। तो जहाँ पर ऐसा होता है कि बच्चे को कम प्यार मिल रहा है या ज़्यादा प्यार मिल रहा है, सो ओवर पैम्परिंग हो गई या फिर बहुत कम प्यार मिल रहा है, तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनमें कभी कभी, अब हर बच्चे में तो इस प्रकार की चीज़ नहीं टेक प्लेस करेगी,
0: बिल्कुल
1: बट इन सर्टेन केसेस व्हाट हैपेंस इज कि उनके अंदर ईटिंग को लेकर पुअर हैबिट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम आती है या किसी प्रकार की एनजाइटी डेवलप होती है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से, तब हमारा अनकॉन्शियस माइंड अलग अलग प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म्स को यूज़ करता है, जो व्यक्ति के बिहेवियर से या उसकी सोच समझ से उसको उस पर्टिकुलर चैलेंज को फेस करने में उसकी मदद कराता है। नाउ इमेजिन कि अगर एक बच्चा है, एक व्यक्ति है जिसको लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, सो देर इज़ दिस बिलीव इन देम कि आई एम नॉट गुड इनफ। और माइंड क्या करता है ना, माइंड किसी भी नेचर से या प्रकृति से भिन्न नहीं है, ये भी प्रकृति ही है। आप देखेंगे रुचिका तो आप समझेंगे कि प्रकृति में हर चीज़ जो है वो एक बैलेंस के फॉर्म में चलती है,
0: जी
1: राइट? अब अगर व्यक्ति का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज अबाउट आई एम नॉट गुड इनफ, मैं काफ़ी नहीं हूँ, तो उसका एक्सटर्नल बिहेवियर होगा कि मैं काफ़ी हूँ,
0: बिल्कुल
1: वो उसे कंपनसेट करने का प्रयास करेगा। और मैं काफ़ी कैसे हूँगा जब मुझे हर वो चीज़ मिलेगी जो मैं चाहूँगा,
0: चाहूंगा
1: मुझे क्या चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मेरे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को कंपनसेट कर सके। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मैं इनफ नहीं हूँ
0: नहीं है,
1: आएगा कि मुझे प्यार कम मिला है या मुझे उतना प्यार नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, या
0: मिला
1: कोई मुझे
0: चाहिए।
1: प्यार नहीं करता है बिकॉज मैं इनफ नहीं हूँ इसलिए लोग मुझे प्यार नहीं करते। हैंस उसका एक्सटर्नल बिहेवियर रहेगा कि मुझे प्यार मिले, वो प्यार को कहाँ से लेने का प्रयास करेगा, फूड से, बिकॉज पीपल कैन नॉट कंट्रोल और चेंज द ह्यूमंस अराउंड देम, बट दे कैन कंट्रोल और टेक चार्ज ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स।
0: बिल्कुल, तो ईटिंग हैबिट्स को हम कंट्रोल
1: कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे,
0: कर
1: वहाँ से हम
0: सकते
1: इंसान जो है उसको कंपनसेट करने का प्रयास करता है।
0: जी। और ये एक तरह से कंपनसेशन की हम बात करें तो लाइफ में हर कहीं ना कहीं हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती
1: बिल्कुल
0: है, तो ये बातें एक तरह से हमारी डेली रूटीन से ही जुड़ी हैं, और अगर हम पूरी गहराई से देखने लगे, सुबह से लेकर शाम तक देखने लगे, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। कई बार हमारे मन में ये बातें हमें परेशान करती ही करती हैं। तो जैसे कि अगर हम ईटिंग डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इसके लक्षणों की हम बात करें, इसके सिम्टम्स की हम बात करें, हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारे में ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो परेशानी शुरू हो रही है, या हमें ये फेस, मतलब कि हमने शुरू कर दिया अपनी लाइफ में से फेस करना?
1: देखिए, देर इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट एंजाइटी रिलेटेड टू फूड कि मैंने खाना या तो नहीं खाया है, या तो मुझे खाना और खाना है, या फिर देर इज़ अ गिल्ट अटैच टू इट कि मैंने इतना खाना क्यों खा लिया, और दैट देर इज़ कॉन्स्टेंट वरी अबाउट मैं इतना खाना खाऊंगा और इतना नहीं खाऊंगा। ये चीज़ सुबह से लेकर रात तक रहेगी, कॉन्स्टेंटली बनी रहेगी एक लंबे अरसे तक, मतलब हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता गुजर जाएगा, बट इंसान इसी चीज़ में अटक चुका है। उनका जो सोच है, जो उनकी ओवर थिंकिंग है, वो इसके रिगार्डिंग ही चलती रहेगी। जब इस प्रकार की चीज़ें हों और इंसान के बिहेवियर में या उनके वेट में, बॉडी वेट में अचानक से कोई बॉडी, उनका जो वेट है वो बढ़ जाएगा या फिर वो उनका वेट घट जाएगा, जब इस प्रकार की चीज़ें होती तब समझ जाना चाहिए कि ये जो है ठीक नहीं जा रहा, कुछ तो इशू है।
0: तो मैम, जैसे अगर हम डिसऑर्डर की बात करें तो क्या ये एज वाइज डिपेंड करता है या सभी को एक तरह से ये फेस होती हैं चीज़ें?
1: एज वाइज तो नहीं इसका कोई सिग्निफिकेंस है कि इस एज में इस प्रकार का ही डिसऑर्डर रहेगा, नहीं। ये इंसान के डिफेंस मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से, किस रूप से वो चीज़, वो स्ट्रेस बाहर आएगा। देखिए, स्ट्रेस ऑलरेडी प्रेजेंट है जीवन में, अब उस स्ट्रेस जिससे एंजाइटी डेवलप हो रही है, उस एंजाइटी को कंपनसेट करने के लिए या उस पर काम करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म यूज होगा। वो डिफेंस मैकेनिज्म देन विल रिजल्ट इन टू डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर। तो स्ट्रेस तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ईटिंग डिसऑर्डर में भी अब आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के टाइप्स हैं, तो इसमें एज या फिर व्हाट फेज ऑफ लाइफ द पर्सन इज इन, इससे इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, कई बार ऐसा हमें लगता है कि बीमारियां जो हैं, मतलब कि हमारी एक तरह से ये मानसिक सोच होती है कि बच्चों को ज़्यादा हो सकती हैं या युवाओं को ज़्यादा हो सकती हैं या बुज़ुर्गों को ज़्यादा हो सकती हैं, तो हम ये कई बार जो है एज वाइज जो है इन्हें डिफ्रेंशिएट करने लग जाते हैं। तो इसलिए ये सवाल जो था मेरा अपने दोस्तों तक पहुँचाने के लिए, ताकि हम हर चीज़ को जो है वो अच्छे से समझ सकें और जान सकें, क्योंकि कई बार क्या होता है बिना जानकारी के हम जो चीज़ें करने लग जाते हैं जिसके बारे में हमें पूरा नॉलेज नहीं होता, तो वो भी हमें प्रॉब्लम में लाकर खड़ा कर देते हैं। तो टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स का जो है ये ईटिंग डिसऑर्डर रहता है, लेकिन उससे पहले इंजॉय करेंगे कार्यक्रम का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों, इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं 91.2 ओमेगा हर्ट्स पर। ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और बहुत ही खास बातचीत आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में आप सभी जान रहे हैं। तो मैम, जैसे कि अभी हमने बात की कि किस किस तरह से जो है ये हमें फेस करना पड़ता है, एज वाइज नहीं होता है और ये जो है एक तरह से मानसिक स्वास्थ्य पे जो है प्रभावित करता है। अब हम बात कर रहे थे गीत से पहले कि ये कितने टाइप्स का रहता है, तो ईटिंग डिसऑर्डर को हम कितने टाइप्स में लेते हैं या कितने किस तरह से होते हैं?
1: ईटिंग डिसऑर्डर देखिए मेनली तीन टाइप्स के हैं। तो पहला जो आई थिंक जिसको सभी लोग जानते हैं उसे हम बोलते हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर।
0: वो किस तरह से रहता है?
1: बिंज ईटिंग का मतलब है कि आप इकट्ठा एक बार में बहुत सारा खाना खा लेते हैं। इंसान को अंदर से ऐसे अर्जेस आती हैं कि मुझे खाना खाना है। बेसिकली पहले स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस एंजाइटी ट्रिगर होती है। एंजाइटी ट्रिगर होने पर वो अपनी एंजाइटी को शांत करने के लिए बहुत सारा खाना खाने की इच्छा उनके अंदर जागरूक होती है। फिर वो बहुत सारा खाना मंगाएंगे और वो बहुत सारा खाना खा लेंगे। ये जो इतना सारा खाना खाते हैं, ये चीज़ अगेन परसिस्टेंटली प्रेजेंट रहेगी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और तभी इस डिसऑर्डर को डिसऑर्डर का रूप दिया जाएगा। क्योंकि बिंज ईटिंग तो अक्सर आम आदमी भी कभी कभी कर लेता है, बट अगर कोई व्यक्ति बिंज ईटिंग को डेली लेवल पर कर रहा है, डेली बेसिस पे कर रहा है, या जैसे ही स्ट्रेस आ जाए तभी तभी वो इतना सारा ओवरली, आप समझ रहे हैं, ओवरली ही खाना खा ले जितना शायद पॉसिबल ही नहीं है एक आम व्यक्ति के खाने के लिए। जैसे आप आधा केक खा सकते होंगे बिंज, आप उसको बोलेंगे मैंने बिंज ईटिंग कर ली। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बिंज ईटिंग कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा दो केक, तीन केक, चार केक खा जाएंगे। दैट इज़ द लेवल ऑफ डिफरेंस, जो स्केल की बात हो रही है ये उस लेवल का डिफरेंस है बेसिकली।
0: पर मैम, आपको क्या लगता है कि अगर हम इस डिसऑर्डर को देखें, बिंज ईटिंग को, तो क्या ये डेली में, हमारी लाइफ में, डेली रूटीन में आ सकता है? इज इट पॉसिबल?
1: बिल्कुल आ सकता है। डिपेंड करता है कि स्ट्रेस किस लेवल का प्रेजेंट है, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति अपने स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को कंपनसेट या ओवरराइड करने का प्रयास करता है बाय ईटिंग अ लॉट, बाय स्टफिंग देमसेल्फ।
0: क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अगर नॉर्मल हम लाइफ की बात करें, हम मतलब कि अपने ही अपने साथ जुड़ी कुछ बातें, तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार मन करता है कि बहुत कुछ खा लें, जैसे आप कह रहे हो कि मन करता है कि सब कुछ ही खा लें हम, है ना। लेकिन एक दिन खा लिया जैसे, तो अगले दिन फिर नहीं यार, मतलब हमें वो एक सिग्नल मिल जाता है कि नहीं
1: हाँ, अब रुक जाना चाहिए,
0: रुक जाना चाहिए,
1: बहुत
0: नहीं तो फिर मुश्किलें हो जाएगी,
1: डाइजेशन ठीक नहीं है, राइट? दिस इज व्हाट इट इज फॉर अ ले पर्सन
0: जी।
1: लेकिन जब ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं, जिनको ये डिसऑर्डर होता है, तो ऐसे में व्यक्ति का बहुत ही क्लासिक बिहेवियर होता है। क्लासिकली अर्जेस उनकी प्रेजेंट होती है जैसे ही स्ट्रेस उनके लाइफ में आता है। तो स्ट्रेस आएगा एंड देन दे विल स्विच टू बिंज ईटिंग, फिर से स्ट्रेस हुआ, फिर से बिंज ईटिंग। और वही बात है कि सर्कमस्टेंशियली डिपेंड करता है कि उनके लाइफ में स्ट्रेस आ कब कब रहा है। अगर वो परसिस्टेंटली बना हुआ है तो उनका बिंज ईटिंग हैबिट जो है वो भी परसिस्टेंटली बना रहेगा। ये चीज़ इसमें व्यक्ति के अंदर कंट्रोल नहीं हो पाता, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता कि मुझे अब जो है रुक जाना चाहिए, वो स्टॉप नहीं लगा पाता, वो खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। अल्टीमेटली व्हाट दे आर डूइंग साइकोलॉजिकली इज सबकॉन्शियस लेवल पर उनका वो जो इतना खाना खा रहे हैं दैट इज ऑफरिंग देम अ सेंस ऑफ कम्फर्ट, अ सेंस ऑफ प्लेजर एंड अ सेंस ऑफ लव एंड बीइंग केयर्ड।
0: जी बिल्कुल। तो यहाँ पे भी आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया होगा दोस्तों कि किस तरह से कई बार हमारे साथ तो ऐसा ही होता है कि एक दिन बहुत ज्यादा खा लिया, दूसरे दिन मतलब कि पता चल जाता है कि नहीं, अगर ज्यादा खा लिया तो मुश्किल हो जाएगी डाइजेशन में, फिर नींद भी नहीं आती एक तरह से, सोने
1: का। रुचिका, इसमें आप ये भी देखेंगे कि आप जो बहुत ज्यादा खा लेंगे वो सर्कमस्टेंशियली होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन स्ट्रेस।
0: बिल्कुल,
1: है ना। और उसकी भी एक मात्रा होगी, आप स्ट्रेस में हैं अगर और आपने कुछ अच्छा खाना खा भी लिया, लेट्स से योर फेवरेट फूड या ऑल योर फेवरेट डिशेस यू हैव ईटन, उसका भी एक मात्रा होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, एक मात्रा तक ही हम खा पाते हैं, उसके बाद तो फिर ओवर ईटिंग हो जाता है। तो वो सेकंड टाइप की हम बात करें तो सेकंड टाइप किस तरह से रहेगा?
1: सेकंड टाइप जो है उसका नाम है बुलिमिया नर्वोसा।
0: बोली नहीं, इसमें भूल जाते हैं कि खाते खाते
1: नहीं, खाना खा लेने के बाद भूलने का प्रयास करते हैं कितना खाया है
0: मतलब भूलने से जुड़ा जरूर है।
1: सो बेसिकली बुलिमिया नर्वोसा में इंसान बिंज ईटिंग तो करता है
0: जी,
1: बट दैट कम्स अलोंग विद रिमोर्स, एज इन उनके अंदर एक गिल्ट आ जाता है खाना खाने के बाद ही कि मैंने इतना सारा खाना क्यों खा लिया, और उस गिल्ट को कम करने के लिए देन द पर्सन ट्राइज टू वॉमिट। पहले पर्सन बहुत सारा खाना खाएंगे और फिर उसके खाना खाने के बाद ही उनको जो गिल्ट ट्रिगर होगा उससे दे विल ट्राई टू वॉमिट इट आउट कि उतनी सारी कैलोरीज उनकी बॉडी में ना जाए। तो ये पहले जो बिंज ईटिंग बताया, बिंज ईटिंग इसका भी पार्ट है, बस ये है कि इसमें बिंज ईटिंग के साथ साथ गिल्ट एंड वॉमिटिंग इंक्लूड रहता है।
0: तो मैम ये जो मतलब कि एक तरह से गिल्ट वाली बात है, तो ये किसी रीजंस की वजह से या सिर्फ स्ट्रेस का ही लिंक है इस पूरी इसमें अगर हम बात करें?
1: देखिए स्ट्रेस का तो लिंक है ही, है ना, इट्स अबाउट द डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज अकरिंग। सबके डिफेंस मैकेनिज्म अलग अलग है। अब एक प्रकार से देखिए तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, हमें प्यार कहीं और से चाहिए बट हम उसको कंपनसेट कहीं और से कर रहे हैं। उसके बाद हमें ये भी पता है कि इट इज़ नॉट गुड फॉर माई बॉडी, तो वो एक गिल्ट भी क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पर अनडूइंग का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जहाँ पर व्यक्ति अपने करे हुए एक्शंस को अनडू करने का प्रयास करता है, तो यहाँ पर अनडूइंग का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है।
0: बट ये मतलब कि उन लोगों के साथ में भी ज़्यादा रहती होंगी सिचुएशंस जो अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा मतलब सोचते हैं।
1: बिल्कुल, people who are more conscious about how they appear, people who are into modeling business, या फिर जो हमारे actors हो गए
0: जी,
1: उनके साथ ये चीज़ होना ज़्यादा possibility रखती है क्योंकि उनके अंदर एक constant worry रहती है in terms of how many calories I have taken. So people who are in fitness field, है ना,
0: बिल्कुल,
1: तो इस तरह के लोगों को ये इस प्रकार की परिस्थिति से गुजरना पड़ सकता है।
0: और स्ट्रेस का भी अगर हम बात करें तो मैक्सिमम ऐसे ही फील्ड में हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। नॉर्मल लाइफ की हम बात करें तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी चीज़ें जो है उन्हें फेस करनी पड़ती होंगी।
1: किस तरह का स्ट्रेस?
0: जैसे अगर मतलब खाने से रिलेटेड ही अगर हम बात कर रहे हैं ना, जैसे कि हमने खा लिया तो बहुत ज़्यादा खा लिया, तो फिर वो सोच विचार, क्योंकि हमें तभी ऐसा फील होता है जब हमें एक तरह से एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है या सांस लेना मुश्किल हो जाता है, नींद नहीं आती है।
1: वो तो देखिए पुअर ईटिंग हैबिट्स के वजह से हो रहा है, लेकिन जहाँ तक बात करी जा रही है ईटिंग डिसऑर्डर की, तो ऐसा मानिए कि इंडियन कल्चर में हमारा जो नेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो 2-3% ऑफ पीपल दे गो थ्रू ईटिंग डिसऑर्डर।
0: जी बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ पे लोगों को मैक्सिमम इतनी चीज़ें,
1: जबकि यूएसए में ये चीज़ 9% तक प्रोमिनेंट है, तो दैट इज अराउंड 28 बिलियन पीपल। तो इट्स वो वेरी करता है, वो स्केल पर वेरी करता है, वो जो एक कल्चरल बैकग्राउंड है, कल्चरल नॉर्म्स हैं उन पर वेरी करता है, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी की सोच कैसी है, बिकॉज यू सी देर आर सर्टेन फैमिलीज जहाँ पर आपके अपियरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यू विल फाइंड पीपल लाइक यू विल फाइंड पेरेंट्स हु आर सो कॉन्शियस अबाउट देयर ओन यू नो डॉटर्स एंड चिल्ड्रेन की, अरे तुम तो इतनी मोटी लग रही हो इस ड्रेस में, तुम ऐसे मत पहनो, तो उनको निगलेक्ट तो मिल ही रहा है, उनको अनलव्ड और अनसीन भी फील हो रहा है, अनएक्सेप्टेड भी फील हो रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति का दिमाग, उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म, वो इस प्रकार से काम कर सकता है कि दे मे एंड अप हैविंग ईटिंग डिसऑर्डर्स।
0: बिल्कुल, तो ये अगर ऐसी सिचुएशंस को हम देखें तो वो तो हमें यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे अगर अब की बात करें, आज के समय की हम बात करें। पहले
1: क्या देखिए ईटिंग डिसऑर्डर के ऊपर क्या है ना कि लोगों को अवेयरनेस ही बहुत कम है
0: जी,
1: तो पुअर ईटिंग हैबिट या फिर रो दिए स्ट्रेस हो गया, लोग इसको इस तरीके से करके ना टाल देते हैं, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जो सामने आ पाते हैं। हमारी फील्ड में ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, ऐसा नहीं है कि आज तक नहीं आए हैं लोग, आते हैं लोग, लेकिन उनकी जो नंबर ऑफ पीपल जो अप्रोच करते हैं वो काफ़ी कम होते हैं।
0: बिल्कुल, तो ये दोस्तों ज्यादातर केसेस यही हो सकते हैं, खास करके युवाओं में, लड़कियों की बात करें हम, उनके साथ ये सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि अगर उन्हें लगे कि नहीं हम थोड़ा सा भी मोटापा जो है हम गेन कर रहे हैं,
1: then
0: तो
1: we
0: अगर
1: will end
0: थोड़ा
1: up
0: सा
1: losing
0: खा
1: something else. See,
0: लिया
1: ये बहुत ज्यादा strongly associated होता है कि हमारी body appearance अगर ऐसी से ऐसी हो जाएगी, then what are the things that we may end up losing?
0: जी
1: You
0: बिल्कुल,
1: know? तो उसका डर, उसका उस चीज को खोने का डर ना, वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है दैट इट अल्टीमेटली एंड्स अप क्रिएटिंग इवन मोर स्ट्रेस फॉर द पर्सन. तो ऐसे में तो बहुत ही आम है कि पीपल विल रिमेन कंसर्न अबाउट देयर अपीयरेंस. And that's actually really sad.
0: बिल्कुल जी, तो दोस्तों हमने अभी दो टाइप्स की बात की है, एक और टाइप है जो कि हम बात जरूर करेंगे, जानेंगे कि उसमें किस तरह से, एक में तो भूलने की बात आ गई, गिल्ट की बात आ गई, और एक में बहुत ज्यादा खाने की बात आ गई, दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और अब तीसरा किससे रिलेट करता है वो हम इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद जानेंगे.

0: तो इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और प्रियशी के साथ। जी, तो बहुत ही खास जानकारी मैम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं ईटिंग डिसऑर्डर की, जो कि आज तक आप सभी ने शायद ही सुना होगा, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। अगर हम सुनने की बात करें भी, बहुत कम लोग जानते होंगे जो मेडिकल फील्ड से होंगे या फिर जो थोड़ा सा जानने की इच्छा रखते होंगे। अदरवाइज तो हमें यही होता है, बस खाना खाओ, सो जाओ, कमाओ, बस यही करते रहो। तो आज ये बहुत ही खास जानकारी जो है वो आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हर एक पहलू को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब हम जानेंगे तभी तो हम उस पर काम कर सकेंगे, नहीं तो आज के समय में आप सभी देख रहे हैं कि जिंदगी किसी भी इंसान के लिए एक मजाक से बनकर रह गई है। तो खुद का मजाक ना बनने दें और ना ही किसी का बनाए, बल्कि ये बहुत ही अनमोल सा समय है, बहुत अनमोल जिंदगी है, तो इसे खुलकर इंजॉय करें पूरे नॉलेज के साथ, पूरी जानकारियों के साथ। तो मैम, जैसे कि हम टाइप्स की बात कर रहे हैं ईटिंग डिसऑर्डर की, तो दो टाइप्स हमने डिस्कस किए, अब आते हैं थर्ड टाइप पे। तो उसमें याद रखने की बात है या फिर मिक्सअप है सारा?
1: देखिए, स्टार्टिंग के जो दो हमने आपको बताए
0: जी,
1: बिंज ईटिंग एंड बुलिमिया
0: जी,
1: दोनों ही ऐसे डिसऑर्डर्स हैं विच अल्टीमेटली विच माइट टेक द पर्सन टूवर्ड्स ओबेसिटी। बिंज ईटिंग विल टेक द पर्सन टूवर्ड्स ओबेसिटी, बुलिमिया वो सब मे ट्राई टू प्रिवेंट टू टेक द पर्सन टूवर्ड्स ओबेसिटी। उसके अलावा देर इज वन सिंड्रोम, नाइट ईटिंग सिंड्रोम।
0: बिल्कुल,
1: नाइट ईटिंग सिंड्रोम अगेन मे टेक द पर्सन टूवर्ड्स ओबेसिटी। तो दिस द थर्ड कैटेगरी ऑफ दिस ईटिंग डिसऑर्डर इज बेसिकली कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ इट। जैसे हमने बताया, इन टू एक्सट्रीमिटीज, टू पोलैरिटीज एग्जिस्ट करती है, राइट? ज़्यादा खाना भी खराब है और
0: कम खाना भी खराब है।
1: सो थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड एनोरेक्सिया नर्वोसा। सो एनोरेक्सिया नर्वोसा दो शब्द है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इंसान खाना बहुत कम कर देते हैं, इतना कम कर देते हैं कि उनकी बॉडी पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। बॉडी वेट बहुत ज़्यादा कम होने लगता है, इतना कि उनकी जो ओवरऑल फंक्शनैलिटी है, उनका जो कॉग्निशन है, जो उनका एक एनर्जी लेवल है बॉडी का, वो एक नॉर्मल लाइफ सस्टेन ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उन्हें और ज़्यादा दिक्कतें। यहाँ तक कि लोग एक एक ग्राम, क्या लोग एक एक मिलीग्राम को ऑब्जर्व करके, को कैलकुलेट करके खाना खाते हैं, जिन्हें एनोरेक्सिया नर्वोसा। आप ऐसे लोगों को देखेंगे तो उनका बॉडी वेट आपको देखकर एहसास हो सकता है। ऐसे में क्या होता है कि इंसान का बॉडी वेट एकदम से गिर जाता है, एकदम से कम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने खाना ही छोड़ रखा है, एक प्रकार से खाना ही त्याग देता है। वो दिन भर में दो चम्मच एवरी मील खाएंगे, या फिर वो इतना कम हो जाता है, दो दो चम्मच एवरी मील की जगह। कुछ तो ऐसे सीवियर केसेस होते हैं रुचिका, जहाँ पर सिर्फ वन स्पून इन्हें देखा गया, और अगर आप उन्हें बोलो कि इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, यू शुड ईट इट, तो उन्हें एनजाइटी हो जाएगी। इतनी एनजाइटी कि उनको लगेगा कि नहीं, अगर मैंने ये खाया तो मतलब आई विल डाई, आई डोंट वॉन्ट टू ईट इट। तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर डिसऑर्डर में
0: तो सर्वाइव करना मुश्किल,
1: बहुत मुश्किल हो जाता है। ये डिसऑर्डर USA और यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा देखा जाता है दैन इन इंडिया, बट ऐसा नहीं है कि अगैन बिल्कुल प्रेजेंट नहीं। जैसे उन्होंने बताया, 2-3% ऑफ पॉपुलेशन डज एक्सपीरियंस इन ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो या तो ये कम्प्लीटली अपोजिट है जो आपने सोचा।
0: बिल्कुल, रीजंस कुछ और हो सकते हैं, है ना? मतलब कि अगर हम यहाँ की बात करें कि यहाँ पे जैसे 2-3% की हम बात कर रहे हैं, तो मे बी रीजंस वही डाइटिंग और पतले होने की टेंशन या ये।
1: देखिए, डाइटिंग जो है ना, वो तो शुरुआत होती है, वो तो बस एक सोच होती है, वो एक माध्यम होती है। समझ रहे हैं? इंसान को पता थोड़ी चलता है कि उनका जो माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है या जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो किस प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म यूज करने वाला है। तो सरफेस लेवल पर इंसान को ऐसा लगता है, और ये बहुत ही लॉजिकल और एक्सेप्टेबल सा एक रीजनिंग लगती है कि नहीं, आई एम ऑन अ डाइट एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस दिस दिस। बट वो जहाँ पे रुकनी चाहिए, जहाँ पे उसको थमना चाहिए, वो वहाँ नहीं थमती। इट टेक्स द पर्सन टू द एक्सट्रीमिटी ऑफ इट, कि जहाँ पर उस चीज़ की इंटेंसिटी, जो एनजाइटी की इंटेंसिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो ड्यूरेशन है ऑफ नॉट ईटिंग, उस पीरियड का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, और जो फ्रिक्वेंसी है ऑफ गेटिंग दिस पर्टिकुलर थॉट कि मुझे नहीं खाना, नहीं खाना, या फिर मुझे मतलब खाना है जो भी डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर डिसऑर्डर वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाती है. तो बेसिकली द स्ट्रेस इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट. दे हैव प्री ऑक्यूपाइड नोशंस, प्री ऑक्यूपाइड थाट्स अबाउट मुझे खाना खाना है या नहीं खाना है, या मुझे कितना खाना खाना है, मैं पतला हूँ या मोटा हूँ. ऐसे में जब व्यक्ति को ये भी लगता है कि मैं जो हूँ मैं हेल्दी ही दिख रहा हूँ, बस लोगों को नहीं लग रहा कि मैं हेल्दी हूँ, बट पर्सन अपने आप को हेल्दी ही समझता है. उनको लगता है आई हैव टू रिड्यूस अ फ्यू इंचेस एज वेल. तो वही बॉडी इमेज से उसका अगेन काफ़ी ऐसा एसोसिएशन भी रहता है.
0: तो मतलब कि हम अगर ओवरऑल पूरे इन टाइप्स की भी बात करें या पूरे ईटिंग डिसऑर्डर की बात करें, तो जो मेन इफेक्ट करता है वो हमारा स्ट्रेस ही इसको इफेक्ट करता है.
1: डेफिनेटली
0: तो स्ट्रेस की वजह से जो है फिर हमारी पूरी दिनचर्या एक तरह से
1: डेफिनेटली.
0: वो बिगड़ जाती
1: अब
0: है.
1: देखिए स्ट्रेस है तो कोपिंग मैकेनिज्म्स भी होंगे, बट अगर हमारे पास पुअर कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं तो इंसान उन्हीं को ही यूज़ करेगा ना, है ना. क्योंकि
0: जी
1: हमें तो नहीं सिखाया गया कि कोपिंग स्किल्स, बेस्ट कोपिंग स्किल्स क्या कौन कौन सी हैं और हमारे लिए स्पेसिफिकली कौन सी यूज़ होंगी. तो इंसान के पास उसके सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में जो भी अवेलेबल रहता है एज अ डिफेंस, वो उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देता है. बी इट अनडूइंग, बी इट डिस्प्लेसमेंट, बी इट समथिंग एल्स. तो अल्टीमेटली हमें ये ख्याल रखना है कि हमें अवेयरनेस में रहना है. जितना ज़्यादा एक इंसान अपनी अवेयरनेस में रहेगा कि क्या चीज़ें हैं जो उनके एक एवरेज जो हेल्थ कंसर्न है वो उससे बहुत ज़्यादा कम जा रहे हैं या फिर उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे
0: आगे
1: हैं,
0: बढ़
1: तो दोनों ही चीज़ें नुकसानदेह हैं. अल्टीमेटली वही बात है ना कि आप खाना खाएं, आप खाना खाकर खुश रहें, है ना. खुश रहने के लिए खाना खाएं वो ठीक नहीं है, और
0: जी
1: खाना खाकर दुखी हो जाए वो भी ठीक नहीं है. अल्टीमेटली बस ये है कि आप खाना खाएं और खुश रहें.
0: बिल्कुल. खुश वैसे भी 2 वक्त की रोटी के लिए ही तो हम सुबह से लेकर शाम तक बस भाग दौड़ कर रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: और वो 2 वक्त की रोटी खाकर भी अगर हम खुश ना रह पाए तो फिर क्या जिंदगी
1: बिल्कुल
0: में क्या ही हमने पा लिया. तो कहते हैं ना दोस्तों, ये जो धन दौलत है, ये जो पैसे हैं, ये सब यहीं रह जाएंगे. जो खुशी के 4 पल हैं बस वही हम अपने साथ लेकर जाएंगे. तो मैम, आप क्या इस पूरे कंक्लूजन में हमारे दोस्तों को इस ईटिंग डिसऑर्डर की हम बात करें तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे साधारण से शब्दों में?
1: जैसा हमने बोला स्ट्रेस है इसलिए खाना नहीं खाएं, खाना खाया है और इसलिए स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा भी अपने साथ ना होने दें.
0: जी
1: खाना जो खाया है उसके बाद खाना खा के उस गिल्ट में ना जाए. तो अपने आप को आपने इन 3 चीज़ों से बचाना है. जब आप अपने आप को इन 3 चीज़ों से बचा लेंगे तो आप जब भी खाना खाएंगे, जिस भी मात्रा में खाएंगे, आप प्रसन्न होकर खाएंगे और प्रसन्नता ही रहेगी आपके पास खाना खत्म होने के बाद भी, है ना.
0: जी
1: तो अपना आप इस प्रकार से थोड़ा अपने ईटिंग हैबिट्स हो गए या फिर आपका जो एक रहन सहन का तरीका हो गया, आप उन चीज़ों का थोड़ा इस प्रकार से ध्यान दें और हेल्दी खाएं, सीजनल वेजिटेबल्स खाएं. ना ही अपनी मात्रा को बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम करें. तो बस यही है रुचिका, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे सारे जो मित्र हैं वो सब खुश रहें और
0: जी
1: स्ट्रेस जो है, जो भी लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है, उस उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, उनसे डील करने के लिए बेटर कोपिंग मैकेनिज्म्स का यूज़ करें.
0: जी दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे. नहीं भी समझे होंगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं आप सभी के साथ जुड़ने के लिए. तो आप सभी जानते ही हैं, वैसे तो एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर आपको अभी भी मन में कोई सवाल है या आप कुछ जानना चाहते हैं इस विषय से संबंधित, कोई भी कंफ्यूजन चल रहा है आपके दिमाग में, तो आप संपर्क कर सकते हैं. हमारा नंबर रहेगा
1: 9354134057.
0: जी दोस्तों, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फोन पे शायद हम उतना अच्छे से बात नहीं कर सकते हैं, उतना खुलकर बात नहीं कर पाएंगे, तो आप हमारे सेंटर भी आ सकते हैं. तो सेंटर का पता रहेगा
1: वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर, शीला विलेज, धर्मशाला.
0: जी दोस्तों, पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ आपके सवालों के सुझाव आप तक पहुंचाए जाएंगे. तो बेफिक्र होकर या तो कॉल कीजिए या तो फिर सेंटर आकर अपनी समस्या का समाधान पाइए. तो आज इस बातचीत के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका, और
1: प्रेयसी को
0: फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत, नई जानकारी के साथ. तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन, धर्मशाला गूंज अपनेपन की।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने का आरोप लगाया है।
2: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, वो इधर उधर का बात करके और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल ही में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है। उन्होंने इस महीने होर्मुज से गुजरने के दौरान GFS गैलेक्सी, MT अल बहिया और MT मुंबासा सहित कई जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा से ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद चल रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। डॉक्टर शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति की समीक्षा की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बहाली और पुनः निर्माण के लिए केंद्र सरकार के हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 823 अंक बढ़कर 77,588 तथा निफ्टी 236 अंक की वृद्धि के साथ 24,221 पर थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए और वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी है।

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों
1: बैठा है? पता नहीं, तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले।
3: पता है ना, मुझे टीबी है।
2: चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो, कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा?
7: मेरा ही होगा लगता है, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में। और
8: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
9: गजब टूटी बाजा।

आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आज ही दोस्त रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए और वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी है।

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत राइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों
1: बैठा है? पता नहीं उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही होगा लगता है, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
8: गजब टूबी बाजा।

नमस्ते नमस्कार श्रोताओं, तुम सारे दाई रेडियो गुंजन धर्मशाला च शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। इसी गूंज कन्ने अहां अपने कार्यक्रम दी जेड़ा शुरुआत है से करदे न। शुरुआत अहां हमेशा गलबात कन्ने करदे न, कन्ने तुहां सारे भी इंतजार जेड़ा है से जरूर करदे न। इंतजार तो जो रहा है कि कालू दिया 2 बजते न, कने इसी इंतजार कने अहाँ भी समय अनुसार तुह तक पुजी आते न, कने तुह सारे भी समय अनुसार अपना अपना रेडियो सेट जड़ा है से ऑन करी लेंदे न। तो श्रोताओं, मौसम की गल करिए, मौसम जड़ा है से बड़ा सुहाना भी है। कुछ ना कुछ बरसात के मौसम च अपना जड़ा ख्याल है से ज़्यादा रखने की जरूरत भी है। आसमान च जिहड़ा काले बादल हैं, सियाह जो क्या सिखाई करी जाते हैं, सियाह जो ये सिखाते हैं कि अहाँ अपना जिहड़ा ख्याल है से किस प्रकार रखन, कने जिहड़ा मिट्टी की खुशबू है सियाह जो जरूर अपनी ओर आकर्षित करती है, कने अहाँ भी जरूर इस मिट्टी का भी आनंद लेंदे न, इस प्यारे दे मौसम का भी आनंद लेंदे न। जिन्हें कि ये मौसम चलिया है बरसात का, इसी कन्ने बरसात के मौसम च अपना जिहड़ा ख्याल है सभी जरूर रखना है। तुहां कन्ने गलबात अहां करिए, अजकना जिहड़ा दिन है से अहां वास्ते बेहतर खास है। 29 जुलाई 2026 का ये दिन अज अहां जिहड़ा खास दिवस बना दे न, से बना दे न इंटरनेशनल टाइगर डे। तो जरूर चर्चा तो हर तरफ होंगी है, कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम के सफर शाह कन्ने जुड़ी सकते। जुड़ने वास्ते जिहड़ा अहां दा नंबर है से तुहां तक पहुँचाई देना, क्योंकि नंबर तुहां तक पहुँचाऊंगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकते या टेक्स्ट मैसेज करी सकते या वट्सएप मैसेज करी सकते। नंबर नोट करा जल्दी जल्दी, नंबर है 701-811-7091। नंबर तुहां तक पहुँचाई तो शुरुआत कर देना इस प्यारे दे गीत कन्ने।

हाँ बोला दीन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारी इस वक्त कार्यक्रम सुना दीन अपनी रेडियो तो शशि कने इसी कने तो हाँ सारे ही सुनिया ये शुरुआत प्यारी दे शुरुआत तो जरूर अमित मित्तू दी आवाज़ च तो हाँ सारे ही गीत जिहड़े इस एंजॉय कीता कने कार्यक्रम भी जरूर इंजॉय करा दे उन्हें कने गलबात हाँ जिहड़ा करा देन से करा देन कि बरसात के मौसम च अपना जिहड़ा ख्याल है से रखना कितना ज़्यादा जरूरी है कने कुथी ना कुथी बरसात का मौसम होंदा तां थोड़ा जिहा मन करदा कि कुछ अच्छा अच्छा बनाइए या कुछ जिहड़े से नए नए पकवान जिहड़े से खाने जो मन करदा कने इसी कने अपनी सेहत का जिहड़ा ख्याल है सभी ज़्यादा रखने की जरूरत है। तो श्रोता तो हाँ जरूर अपनी सेहत का जिहड़ा ख्याल है सभी रखा दे होने ने कने इस बरसात के मौसम का जिहड़ा आनंद है सभी लै दे होने ने इसी कने हाँ फिरी ते अगे बढ़ना है कने अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचानी है सुनदे रहो प्यारी दी फरमाइश है जो तुहां सारे भी इंजॉय करा।

0: अनुदेश मिलब तो मेगा हर्ट्स पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने इसी धुन कन्ने हाँ फिरी ते अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ान देन तो श्रोताओं तो हाँ सारे भी बरसात दा मौसम जेड़े से अपना जेड़ा ख्याल है सभी रखा दे उन्हें न कन्ने इसी कन्ने इस बरसात दे मौसम दा जेड़ा आनंद है सभी जरूर लै दे उन्हें न तां श्रोताओं बरसात दा मतलब यही है कि अहां जो कुथी ना कुथी बरसात दे मौसम च नए नए पकवान जेड़ा न से खाने जो मिलते न या अहां दा जेड़ा पुराना नगमा है या पुरानिया जेड़ा याद न से फ्री ते वापिस आई जांदियां न कने बरसात दे मौसम च हर जगह ख्याल रखने दी जरूरत है चाहे अहां कोई भी काम करा दे न तां ख्याल जेड़े से अहां हमेशा रखदे न तां ही अहां अगे बढ़ी पांदे न कने अहां दे पहले श्रोता जरूर जुड़ चुके हो न तां इन्हां ते पुछदे न कि किस तरीके ने अहां बरसात दे मौसम च अपना जेड़ा ख्याल है से रखी सकदे। हेलो
1: हेलो नमस्ते शशि जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: बिल्कुल जी, धन्यवाद जी। और तुहां ठीक ठाक
0: जी? यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक है जी। जी इंदु
1: हेलो।
0: जी हेलो।
1: हाँ जी हाँ जी, मतलब आवाज कटी गई
0: जी। जी तो इंदु जी क्या काम कार तुहां लगाया, क्या करा दे?
1: बस जी काम भी करे करना कर थोड़े प्रोग्राम भी सुना दी
0: जी। तो प्रोग्राम सुना दे तो क्या तुह जो प्रोग्राम च खासियत लगी कि तुह दा मन किता कि मैं फोन चुक दी है कने फोन नहीं करती है?
1: इंत दा डेली फोन कर दी ना
0: जी जी
1: हाँ तो रेडियो लवर आने दी ना, जेडे रेडियो लवर है ना तो फोन करना करना चाहे कुछ बहाना हो ना हो ना।
0: जी जी
1: हाँ तो गल करनी दे तो करी लेनी।
0: जी जी जरूर जी जी। तो इंदु जी आज जहाँ जेड़ा गाल बात करा दे न से तो हाँ जरूर सुनी ली होनी है।
1: जी बिल्कुल जी।
0: जी तो हाँ क्या लगता क्या किस तरीके ने हाँ अपना जेड़ा बरसात दे मौसम च बचाव करी सकते या इस बरसात दे मौसम दा जेड़ा आनंद है से ले सकते?
1: देखा जी, जियां मैं एक गृहिणी है ना, सारे तो पहले तो कि बरसात च देखा अजकल हाँ जो बासी खाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए है ना।
0: जी जी
1: तो इस चाहे कि जालू भी बना थोड़ा बना फ्रेश बना और हेल्दी होंदा और सही खवा खा कने बच्चे सही खवा।
0: जी
1: दूजा आउटिंग ते जाने दी बचा मौसम दा मिजाज दिखी सुनी के घर ते निकला है ना। फिर जालू भी जा को है मतलब बेशक धूप है इसका मौसम दा कोई पता नहीं होंदा कल धूप ना कल बरखा हो जानी ता अपने लई एक छाता या रेनकोट जरूर होना चाहिए अपने वाले।
0: जी जी
1: जी इसी तरीके ने बस छोटी छोटियां होंगे अगर बाकी दिखी सुनी के चला कुछ कदम रखना तो थोड़ा जल्दबाजी मत करा आराम में ना चला के क्या होता है कि जल्दबाजी पर स्लिप हो जाते।
0: जी क्योंकि बरसात का मौसम है ना तो हर जगह फिसलन जड़े से चाहे घरे की गल करिए चाहे सड़क की गल करिए या कुछ भी यहाँ चले आते ना तो कुछ ना कुछ हर रास्ता जड़े से फिसलन हो जाता है ना। जी
1: जी जी कई बार क्या होता घरे पानी पे या तो अपने फर्शा पर ही तू टाइला पर पैर खिसक दे पे या दे दूजा अपना खाना खुना बना देता अच्छी तरह कवर करके रखा खाना बिल्कुल खुला मतलब क्योंकि बरसात है कल कुछ तो कीड़ा आई जाना कोई पता नहीं लगता।
0: जी जी जी तो बिल्कुल तो हाँ सही बोलिया कि खाना हाँ जालू भी बना दे ना तो इस खाने जो हमेशा ढकी के रखा।
1: जी
0: जी तो इंदु जी आज तो हाँ कुन दिया गीत संगीत सुनना पसंद करके
1: आज बत्ती गुण मलाने ना।
0: जी जी जरूर बत्ती गुण हाँ मलाई देने जी
1: छत्ती मिलन ना मिलन पर बत्ती मलाई देने गुण।
0: जी जी बत्ती गुण जरूर मिलाई देने जी जरूर तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
1: धन्यवाद जी तुहंदा बड़ा बड़ा
0: जी। तो श्रोता तुह सारी कार्यक्रम सुना दे अपनी रेडियो दो शशि कन्ने इसी कन्ने अपनी कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ा दे कन्ने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुंचा दे तुह सारी भी इस फरमाइशा जो जरूर इंजॉय करा कने नहीं सुनते रहा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला क्योंकि रेडियो गुंजन धर्मशाला कन्ने जुड़ के ताई तो तुम अपनी पसंद दा जिहड़ा गीत है से जरूर सुनी सकते इस कार्यक्रम दे सफर च, ते सफर जो जरूर अगे बढ़ाते न।

0: आशुतो मौसम दा जिहड़ा आनंद है या बरसात दे मौसम उपर जिहड़ा हाँ गलबात करा दे न तां जिहड़ा मौसम है से जरूर बरखा जिहड़ा है से जरूर बरसा दी है कने अपना जिहड़ा पानी दी झमाझम जिहड़ा है से जरूर लगा दी है। इसी कने ये पानी दी झमाझम जिहड़ा है से कुथी ना कुथी नुकसान दे करी भी जा दी है। चाहे से अहाँ असम दी गल करिए तो हाँ न्यूज़ वगैरह जिहड़ा है से दिखते रहते हैं कने हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ हाँ जो सुनने जो भी मिलती है या हाँ दिखते रहते हैं सोशल मीडिया पर। इसी कने गल करिए जिहड़ा बरखा दा मौसम है या बरखा जिहड़ा है से इस टाइम तो थोड़ा मौसम ठीक है पर कल्ले ते ही जिहड़ा राती दी गल करिए तां मौसम जिहड़ा है से बरखा वाला था या बरखा जिहड़ा है से लगी हुई थी कने बड़ी ज़्यादा जिहड़ा बरखा है से ओदी थी। तो बरसात दा मौसम है चलो बरखा होना भी जरूरी है पर अपना जिहड़ा ख्याल है से रखने दी जरूरत है। इसी कने सावन दा महीना है सावन दा महीना भी कुछ जिहड़ा हां दी जिहड़ा प्रकृति है या हाँ दा जिहड़ा वातावरण है से हरा भरा रहिंदा है कने हर जगह हरियाली जिहड़ा है से छाई हुंदी है पर प्रकृति भी अपना जिहड़ा रुद्र रूप है से जरूर दसदी है जैलू अहां प्रकृति कने छेड़छाड़ करदे न। दसो तो प्रकृति कने छेड़छाड़ नहीं करनी है प्रकृति जो जिम्मेवारी समझना है जिन्हां तुहां अपने घरे दे काम करदे न या अपने बच्चे दी देखभाल करदे न उसी तरीके ने प्रकृति भी अहाँ वास्ते है। तो इसी कने तो अहाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च अहाँ कन्नै जुड़ी सकते कने अहाँ कन्नै गल बात जिहड़ा है से जरूर करी सकते। सफर जिहड़ा है से थोड़ा जिहा बरसात दे मौसम कन्नै चलिया कने तो अहाँ इस बरसात दे मौसम कन्नै जरूर घुमा दे फिरा दे भी होने न कने ख्याल जिहड़ा है से अपना जरूर रखा दे होने न। अगले जिहड़ा शो तुहानू तिन्हां कन्नै करदे न गल बात। हैलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: धन्यवाद मैडम जी। ठीक ठाक मैडम जी तुसां ठीक ठाक सारी मैडम जी?
0: जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तुहां अपना परिचय दे दिया कुत्थों दे रहने वाले हैं जी?
1: सुनील कुमार बोले मैडम जी कोठियां ते।
0: जी तो सुनील जी कोठियां जलोड़ दा मौसम क्या वे इस टाइम?
1: इस टाइम तो मैडम जी धुप लगी है बदलोखी।
0: जी अच्छा धूप जिहड़े से लगी
1: बदलोखी दा बड़ी भारी बरखा होई पिया करे मैडम जी।
0: जी बरखा ज्यादा होई ना जी?
1: हां जी बहुत ज्यादा होई मैडम जी।
0: जी जी तो तुहें क्या लगदा बरसात दे मौसम च हयो अपना ख्याल किस प्रकार रखना चाहिदा या श्रोतायो क्या संदेश तिना तक तुहां पहुंचाना चाहंगे?
1: मैडम जी अजकल फिसलन होंदी ना मैडम जी जियां टाइलें च पानी पीया या मतलब अंगन चिपले होंदे तो मतलब ध्यान नहीं चढ़ना चाहिदा।
0: जी जी
1: अजकल के होंदे हुण छुट्टियां च बच्चे आयो मैडम जी
0: जी
1: दौड़ दड़ाई करदे कुथी पे जान मैडम जी ते उहनां दा देखभाल भी करना मारी वड्डे नी जिम्मेदारी मैडम जी।
0: जी जी
1: बाकी और दिखा मैडम जी अजकल के खाना मतलब ताजा बनाओ ताजा खाओ।
0: जी
1: हां जी मैडम जी कने जेड़ा बाई खाना होंदा है खाना नहीं चाहिदा मैडम जी।
0: जी जी
1: और मैडम जी जियां क्या बोलदे जियां अजकल बरसात दिन जियां घा घू जियां होंदा मैडम जी है मतलब थोड़ा ये कर देना चाहिदा मैडम जी कटना चाहिदा।
0: जी जी जरूर।
1: और जियां घा जियां कटना जाना मैडम जी थोड़े मतलब ओ फूट डाली जियां प्लास्टिक के होंदे ने मैडम जी।
0: जी जी
1: जियां मतलब घा बढ़ना तो पहले डंडे ने दिखी ले कोई ऐसी चीज ता नहीं बैठी होवे।
0: जी भी जेड़ा साफ सफाई दा जेड़ा ध्यान है से ज्यादा रखने दी जरूरत होंदी।
1: हाँ जी मैडम जी हाँ जी।
0: चाहे से अहां दे घरे दे आस पास कोई भी रस्ता जिहड़ा अहां दे घरे जो गुजरता है तिथु अगर तुहें लगा था कि का है तो तिसो साफ करी दिया।
1: हाँ जी क्योंकि मैंने जीजू कंडू पे ही रहंदा ना काई जी फिरी।
0: जी
1: जी बाकी मैडम जी
0: जी
1: बाकी मैडम जी जियां राती जियां सोई जांदे तो बिस्तर भी मतलब साफ करना चाहिए कई बारी ऐसा होंदा सांप सूंप भी बेही रहंदे मैडम जी।
0: जी जी क्योंकि जिहड़ा अगे तुहां सर्प दी गल कीती तां से सुकी जगह से ढूंढदे ना जी क्योंकि बरसात
1: जगह तो सुकी आजकल तो बोलते सुकी जगह दौड़ते मैडम जी।
0: जी जी जी क्योंकि
1: बरसात
0: दा मौसम है बरखा हर जगह होंदी पानी पानी हर जगह होंदा तो हर चीज दा ध्यान रखना अहां दा काम है कि अहां किस प्रकार साफ सफाई रखदे न चाहे से घरे दी साफ सफाई है चाहे से समाज दी साफ सफाई है गांव दी साफ सफाई है या शहर दी साफ सफाई है ना जी।
1: हाँ जी मैडम जी, हाँ जी
0: जी तो सुनील जी, आज तो कुंदिया गीत सुनना पसंद करके।
1: गाना सुनाई दे मैडम जी, करनैल राणा दी आवाज़ ते, तू बज ले मना करतार मेला 2 दिन 2 दिन दा।
0: जी जरूर, एक गीत ते भजन तो तक पहुँचा दें जी। चुनने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
1: धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद मैडम
0: जी
1: जी, नमस्ते।
0: तो श्रोताओं, तो सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कहने इस अफर्ट तो तक रहता है 2 ते 3 बजे तक। कने तो सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ते न, कने हाँ करने गलबात जड़े से जरूर करते हैं। तो इसी गलबात कने हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगर बढ़ाते न, कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते न।

0: तुझे तो तुह सारे ही सुनिया ये प्यारा देया गीत, प्यारी देई फरमाइश। ये फरमाइश अह तक पुजी होवे व्हाट्सएप के माध्यम ने, तिना दा नाम है पवना जी। तो जरूर पवना जी तक अह ये गीत पहुँचाया, कन्नै अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्नै करदे न गलबात। हैलो,
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुह दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: हाँ जी, ठीक ठाक जी। तू सुना
0: जी? यहाँ भी ठीक ठाक है जी। तुह कुथों ते बोला दे, कने तुहां दा नां की है जी?
1: मैं तारा चंद बोला था जी, दाड़ी ते।
0: जी तारा जी, बड़े दिनों बाद तुहां रेडियो गुंजन धर्मशाला जो याद किया।
1: हाँ जी, हाँ जी, बड़े दिनों बाद। मैं के कई लंदे फोन में।
0: जी जी जरूर जी, याद करना भी जरूरी होता ना जी।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ
0: जी। तो तारा जी, क्या हाल चाल है दाड़ी?

0: लेंदी, क्या काम कार लगेगा
1: अरे बस ठीक है। दुकाना बैठे हो,
0: जी?
1: बारिश हो रही है।
0: जी ता बरसात दे मौसम दे ऊपर यहाँ गलबात भी करा दे, तो तुहां क्या अपना जेड़ा सुझाव है इसे देना चाहेंगे श्रोता जो?
1: सारे ते बड़ा रुझान है जी। सुझाव है कि सबसे पहले कि बाहर जाना जे कुछ भी तो वहां बंद करो जी, या घूमना घमना बंद
0: जी
1: करना चाहिए आजकल।
0: जी
1: या
0: जी
1: रोड राड खराब हो, कुछ फंसी आए रास्ते, कोई
0: जी
1: ऐसी मिसहैपनिंग हो जा रही है,
0: जी जी
1: अवॉइड करना चाहिए बाहर सबसे
0: जी
1: पहली बात।
0: जी ये
1: दूजा
0: तो
1: है जी, या
0: जी
1: जी यहाँ राती एक डंडा कने टोर्च कने एक रस्सा सोगी बखे रखी के सोआ, रात में कोई प्रॉब्लम होती है तो लाइट होंगी या डंडा होगा तो हाथ इतने पूज सकते, मंजिल हासिल कर सकते। नहीं ठीक
0: जी जी जी
1: है। बाकी ऐसे बरसात से बचाव करना चाहिए, खाने पीने का भी खास ध्यान रखना चाहिए इस दे
0: जी ये तो हाँ बड़ी सही गल बोली, क्योंकि सेहत है तो सारे काम है ना जी। अगर सेहत ही जरा करी डगमगाई तो सारे काम फिर ही है
1: खराब खराब
0: खराब
1: हो
0: हो
1: जाने।
0: जाते। जी
1: सारा परिवार ही ये हो जाता डिस्टर्ब जी।
0: जी जी क्योंकि एक बीमार होता टेंशन सारे जो ही होती ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ
0: जी तो इससे अच्छा है कि अगर आप पहले ही ख्याल रख देना, ठीक है। मौसम है,
1: जी
0: मौसम से कई बार नहीं लगता पता कि कालू
1: हाँ जी
0: सेहत बिगड़ी आनी है, कालू क्या नुकसान अहाँ जो ही आना है। फिर भी अगर अहाँ पहले तो ख्याल रख देना तो कुछ ना कुछ अहाँ अपना भी ख्याल रखी पाते ना, कन बाकी जो फैमिली है तिना का भी ख्याल रखी पाते ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी
0: जी
1: बिल्कुल।
0: तो आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करगी
1: और सुनाई दे मेरे पतने दिया तारुआ, डूबी
0: जी।
1: डूबी नदियां बड़ी तेज धारा है।
0: जी जी
1: सुनो
0: ज़रूर ये गीत ये
1: ठीक
0: फरमाइश तो हम तक पहुँचा दें जी। जुड़ने
1: ठीक
0: वास्ते
1: है,
0: बड़ा
1: तुम्हारा
0: बड़ा धन्यवाद जी तुहदा
1: भी धन्यवाद जी। ठीक
0: जी।
1: है
0: तो श्रोताओं तुम सारे जो ले करी चल देना अगली फरमाइश की और अगली जेड़ा गीत है से तुह तक पहुँचा देना, गीत या भजन अहाँ बोली सकते इस जो।

बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे सुनिया ये प्यारा दिया भजन फरमाइश सुनील जी दी फरमाइश तिना तक पहुँचाई कने तो हाँ सारे भी इंजॉय की थी। इसी कने बरसात दे मौसम दी गलबात अहाँ करा दे न तो खान पान दा जिहड़ा ख्याल है से अहाँ वास्ते रखना ज़्यादा ज़रूरी है। इस सुहाने मौसम दा जिहड़ा अक्सर तुहां जिहड़ा इंजॉय है सभी करते न कने अपनी हेल्थ दा जिहड़ा ख्याल है सभी ज़रूर रखते न। हेल्थ दा ख्याल तुहां किस प्रकार रखते न से कुछ गल्लां जिहड़ा न तिना जो रखना भी ज़रूरी है या समझना भी ज़रूरी है। उबला जिहड़ा पानी है स्याहां जो पीना चाहिदा क्योंकि बारिश दे मौसम च बीमारियां जिहड़ा न बीमारियां दी गल करिए तां पानी जिहड़ा से दूषित होंदा है तां कई बार जिहड़ा पानी है पानी दी वजह ने भी अहां बीमार हो जांदे न। तां जरूर पानी अगर अहां उबाली करी पींदे न तां अहां दी जिहड़ा सेहत है से ठीक रहिंदी है। कने बाहर दे जिहड़ा चाट पकौड़े न तिना जो बिल्कुल ना बोलनी है तुहां या जिहड़ा बाहर अहां कुछ भी खांदे न फास्ट फूड तिना जो बिल्कुल ना बोली दिया क्योंकि सभी कुथी ना कुथी अहां दी सेहत जो नुकसान करते न। कने कई बार तुहां अपने घर च दिखदे न या आस पास दिखदे न तो कई सुनने च गल्लां होंदियां कि नहीं फास्ट फूड खाई करी अहां कुथी ना कुथी बीमार होए। अगर अहां तिना जो ना करते न तिदी बजाए तुहां अगर कोई फ्रूट खांदे न तो बड़ी अच्छी गल है। फ्रूट लिया फ्रूट खा से तुहांदी सेहत वास्ते भी ठीक है कने तुहां फिट भी रहिंदे न। हरे जिहड़ा पत्तेदार सब्जियां न गल अहां करिए सब्जियां दी तां ज़्यादातर तुहां सीजनल सब्जियां न या घरें हाँ बनदियां जिहड़ा सब्जियां लगाइयां या भिंडी दी गल करिए या पत्तेदार जिहड़ा पकौड़े न चलेरिया दे पत्ते न तिना दे तुहां पकौड़े बनाई सकदे। बड़ियां सारियां जिहड़ा अरबी दे पत्ते न तिहदे पकौड़े बना तुहां अरबी दी जिहड़ा भुजी है सभी बनाई सकदे। तां कने जल्दी कहाँ पकौड़े नहीं खाते तल्दी कहाँ हो ये लगता कि ये जिहड़ा बरसात का मौसम है इसे कुथी ना कुथी थोड़ा जिहा फिका जिहड़ा से रही है। तो ज़रूर इस मौसम जो सुहाना भी बनाना है कने गीले जिहड़ा कपड़े न तिना जो पहनने ते बचना है। कई बार होंदा ना कि पानी अगर हाँ पानी ने खेला देने बच्चों का ज़्यादातर पानी ने ही रहा कि पानी ने खेलते रहेंगे ना कने फिर ही जिहड़ा बीमार होने दे जिहड़ा चांस हन से ज़्यादा हो जाते। तो इसी कने हाँ अग्गे बढ़ते न कने अगली जिहड़ा फरमाइश है से पहुँचाते न तारा चंद जी तक कने से रहने वाले न दाड़ी ते

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दिन अपनी रेडियो तो शशी कने तशो तो इसी गल बात करने हाँ फिरी ते अगे बढ़ते न क्योंकि समय जड़े से अपनी रफ्तार लेकर चले हाँ भी समय की रफ्तार कने चलना है।

तो श्रोताओं, इस गाने के दो बोल जिहड़े ने से जरूर तुहां तक पहुँचाए हैं कने जिहड़ा हाँ कार्यक्रम च गलबात करा देने से करा देने बरसात के मौसम च अपना जिहड़ा ख्याल है से किस तरीके ने रखी सकते कने इसी करने कुछ जानकारियां जिहड़ा ने सभी तुहां तक पहुँचाते हैं। तो गल करिए हिमाचल प्रदेश की, जिहड़ा स्कूल शिक्षा बोर्ड है जिहड़ा मार्च 2027 की जिहड़ा आयोजित होने वाली शिक्षा है या दसवीं कने प्लस टू की जिहड़ा वार्षिक परीक्षाएं न तीच जिहड़ा से इतिहासिक बड़ा बदलाव है। जिहड़ा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है से परखने वास्ते दिशा निर्देश अनुरूप जिहड़ा से तैयार करा दे ना कने तीदा जिहड़ा पैटर्न है से बिल्कुल चेंज हो जाना है। तो जरूर ये जानकारी जिहड़ा से तुहां तक पहुँचाई है कने तुहां सुनी भी होनी है। तो जिहड़ा भी 10th प्लस टू दे बच्चे न तिना तक ये जानकारी पहुँची है कि जिहड़ा मार्च च होने वाली जिहड़ा तुहांदियां परीक्षा बोर्ड हैं तीस जिहड़ा पेपर च बदलाव जिहड़ा है से जरूर होना है कने शिक्षा नीति ने जिहड़ा आदेश जिहड़ा है से जारी किए न। तो जरूर तो सारी भी इस कार्यक्रम के सफर च अहां कन्नै जुड़ी सकदे कने अहां कन्नै गलबात जिहड़ा है से जरूर करी सकदे। इसी गलबात जो अहां फ्री ते इत्थों रोकना है कने तुहां सारें जो ही अगली फरमाइश की ओर लेकर ही चलना है क्योंकि इंतजार जरूर इंतजार जिहड़ा है से तुहां बेसबरी ते करदे ना पर इंतजार की घड़ी जिहड़ा है से तुहां वास्ते भी लंबी है कने अहां वास्ते भी लंबी है पर जरूर इसका इंतजार की घड़ी जो खत्म कर देना कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचा देना।

ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहां सारे कार्यक्रम सुना दी थी अपनी रेडियो तो शशि कहने तशो तो इस कार्यक्रम दा जिड़ा सफर है सेहत ही संपन्न होंगे तुहां सारे ही अपनी रेडियो तो शशि जो दिया अनुमति कहने बरसात के मौसम च अपना जिड़ा ख्याल है इसे जरूर रखा ख्याल भी रखा कने अपनी सेहत का जेड़ा ध्यान है सभी रखा कने अपने माता पिता का जेड़ा मान सम्मान है से हमेशा करते रहा। इसी कने तुह सारी अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति कने हमेशा खुश रहा।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग

0: सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात दे करके उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए और वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी है।

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
1: तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।

हर्ष रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात दे करके उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए। वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी है।

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
1: तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
8: गजब टूटी बाजा।

नमस्कार श्रोतों, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा हूँ। सचिन कपूर हाजिर बुझगो इंदी अपनी गप्पा लेकर चौर बजकर दो मिनट बुझगी श्रोताओं और कार्यक्रम इंदे अपने गादे कार्यक्रम रखे सोसामे बुझगो। हाँ श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा बलदन है श्रोताओं के। शख्स जो कोई हरा ही ना सकता जिन्हें चलना ही ठोकरा था सिखरुआ बुआ है ना। और इंसान के श्रोतों सो अपने आप में बड़ा खुदगर्ज भी बुंदा है ना। कोई इंसान की अपने आप में बड़ा खुदगर्ज बुंदे, कोई इंसान के सो अपने आप में बड़ा थोड़ा तेज तरार बुंदे हिन, कोई इंसान बड़े भोले वाले बुंदे हिन है ना। और हर किस्म हर इंसान की असुआसु इस कलयुग में गया सो मुड़ेगन दहन श्रोतों है ना। लेकिन हम तो हमेशा बोलना और बार बार बोलना श्रोतों की ये सब जनाब कर्मारी गलन। और अगर कर्म अह खर करु कर दहन, कर्म और सेहत अगर अह बिल्कुल ठीक रखो कर दहन तो फिर सब कुछ ठीक है। सेहत खरी रखने वास्ते किया सो है सब जानदन किया सुबह किया सो एक्सरसाइज करना चाहिए, योग करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, पानी किया सो जरूर पीना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत अहम होंगी क्योंकि विद इन सेकंड फिर यह बोलते कि शायद ये इतनी घट उम्रियाँ कि चले गो ये बोलते ना तो सुते हैं चले गए जो कि तसी अपने शरीर रो कुछ ना पता, अपने शरीर रहा तसी वॉक रहा ना पता, तसी पानी भी लिमिटेशन कितने ही बोना चाहिए आ सो ना पता, बहुत सारी चीज़ें जो है कि ना सो केयरलेस हो जाएंगे हैं इन शोतों, बहुत सारी चीज़ें जो लेकर और फिर सो सब सब चीज़ अगेन सो एकदम अटैक कर दी और फिर एकदम वो पता ना लगता कि है बीमार क्यों पूछ गया ने या फिर यह है इस दुनिया तो अलविदा के यहाँ से बलीता। तो सेहत रख ख्याल जरूर रखा, सेहत खरे बोले तो सब कुछ खरा लगता है श्रोतों, अगर सेहत ठीक ना बोले तो फिर कुछ ठीक ना लगता है। तो हम सचिन कपूर है श्रोतों इंदी अपनी गप्पा लेकर हाजिर बुआ तो सब श्रोता कॉल जरूर कर सकते हैं 7018 8179 पर नंबर अक मौके फिर तू के शेयर करना हाँ 7018 8179 पर तो है कॉल कर ही सकते हैं इन श्रोतों। तो इस समय टेम्परेचर री गल करने श्रोतों है यानी कि तापमान री गल करना है कि कितना तापमान है तो लगभग लगभग किया सो 21 डिग्री सेल्सियस रे आसपास किए श्रोतों सो इस समय तापमान है। और नमी री गल करिए श्रोतों तो नमी किया जतियो अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी बोलते हैं ना सो किया सो 85% हा। तो यह मौसम रे इस समय धर्मशाला मौसम अरे अपडेट और बहुत सारी जानकारी तो हो गया सो जरूर शेयर करनी है श्रोतों साझा करनी है। आइए था आगाज कर लेंदे इन श्रोतों कार्यक्रम रे इस गीता थों और फिर गीता थों बाद अनेकों जानकारी ने और अनेकों जानकारी रे भंडारा के सो सु तुसु अगो के सो हुनाना हा तुसु रखना हा श्रोतों। तो वेड़ी गुंजन सो की तो है बंडू रहें। आइए जी आगाज कर लेंदे इन कार्यक्रम रे इस प्यारे दे गीता होगी और फरमाइश देने वाले इतों ज़्यादा प्यार

श्रोतो एफ एम एंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर और आऊ सचिन कपूर बिल्कुल हाजिर हा वीडियो सेट में वेड़ी गुंजन धर्मशाला मज बहुत सारे श्रोता रेडियो रे माध्यम तो इस कार्यक्रम जो हूं देन और बहुत सारे श्रोता के श्रोताओं सो ऐप रे जरिए भी इस कार्यक्रम रखे सो आनंद लेंदे हैं। बहरहाल तो सब कॉल कर सकते हैं तू कनेक्ट कर देने है 7081 8 1 7 0 9 1 पर नंबर आग मुके फिर और रिपीट करना हाँ 7 0 1 8 1 7 0 9 1 पर तो है श्रोताओं कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एक खास जानकारी दी और किया सो बढ़ते हैं श्रोतों। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू है सो बल्लू आ श्रोतों की प्रदेश में CBSE तो संवर्ध सरकारी विद्यालय 5 वर्ष में राज्य वे सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान रे रूप में कहना सो उभरने हिन्न। मुख्यमंत्री आज की अशोतों सो शिमला स्थित एक निजी स्कूल रे स्थापना दिवस समारोह भी अध्यक्षता करे है और अध्यक्षता करते समय ए बल्लो की राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे जो शिक्षा का सम्मान अवसर प्रदान करना है। इसी दृष्टिकोण रहते हैं तो सरकारी विद्यालय में पहली कक्षा थों किया सो अंग्रेजी मीडियम शुरू करी दिता है शोधों तथा 156 सरकारी विद्यालय वे CBSE थो जो संबंध रख दें तिंजाओ हाँ 156 सरकारी विद्यालय में CBSE थो संवर्ध भुवन शोधों फिर सकारात्मक परिणाम सामने भी आए और सरकारी विद्यालय में 24,000 थो अधिक विद्यार्थी वगे अशोतों सो दाखिला हुआ हा यानी कि अब क्या सो करखनगर का जो एट प्रेजेंट सरकार है कांग्रेस सरकार की हा ये करखनगर का श्रोताओं जो गवर्नमेंट स्कूल थे तीनों बहुत अच्छा बढ़ावा दे चुकर दी इवन कि ये CBSE में कन्वर्ट भी किया ना सो बुझ गया है ना हेरा भी कि पढ़ने वाले बच्चे की सो कड़ी भी पढ़ लेंदा हा इंटेलिजेंट बच्चा की अपने आप जो बिल्कुल परिस्थिति रख करेगी सो पढ़ी लेंदा हा श्रोतों और कुछ करी लेंदा हा और ना पढ़ने वाला है तो तू जड़ी मर्जी पाई ले दस ना ही पढ़ना लेकिन हाँ अगला जरूर बोलना चाहूँ कि अभी सरकारी स्कूल के अंसो बिल्कुल अपग्रेड बच गए हैं और अंग्रेजी मीडियम मंच किया श्रोतों सो अंग्रेजी मीडियम किया सो शुरू बुझ गो कक्षा पहली तो सरकारी स्कूल है भे बहुत अच्छी गल है सभी असु सभी वास्ते श्रोतों है ना। तो चलिए कार्यक्रम में जानकारी रहा सिलसिला किया सोए चलते रहना श्रोतों जानकारी रहा पिटारा किया सोए खोलते रहने तो सब आरजे सचिन कपूर सोगी बन रहे हैं इस समय और कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा बाखूबी लाइव हूँ कर देने अपने अपने रेडियो सेट में। तो चलिए जी कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं और अगले प्यारे दे गीत किए सो तुंदे वीडियो सेट में ब्रॉडकास्ट करते हैं श्रोतों यही बनी रहा वीडियो गुंजन री गुंज होगी और आनंद लेंदे रहा प्यारे प्यारे गीता रहा और खास जानकारी रहा श्रोतों बोल देन इस गीता तो बाद कुछ और खास जानकारी ले करे।

शोध एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और कार्यक्रम में दी अपनी गप्पा ज्ञान सो चल रही हैं। तैयार लाइव कार्यक्रम में चल रहना हर शोध और ये जानकारी का सिलसिला के सो भी बिल्कुल बड़े गाना हा जानकारी का सिलसिला के सो जरूर हगूँ बढ़ना चिंदा हर शोध जानकारी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुंदी न सो अपग्रेड कर दिन अपडेट किया सो रख दी इन शोतों और अपडेट बुना गया सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बुंदा है इंसान वास्ते। बहरहाल शोतों अगली जानकारी रही हो रहा है लेकर चलते तू सभी जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड है कि श्रोतों सो आगामी मार्च 2027 में आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं री वार्षिक बोर्ड परीक्षा रहे प्रश्न पत्र रहे स्वरूप में एक ऐतिहासिक और बड़ा बदलाव किया सुकर हो तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और परख रहे दिशा निर्देश अनुरूप तैयार बछूरा इस नए पैटर्न का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रणाली जो कि सो अधिक पारदर्शी गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित बनाना है श्रोतों। तो जानकारी यहीं चलती रहनी है अगली जानकारी रही और किसो भी तुसु लेकर चल दें सो किसो के श्रोतों नई दिल्ली में कि सो प्रगति मैदान में 3 दिवसीय इंटरनेशनल एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एवं ऑर्गेनिक एक्सो 2026 में हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग जो कि असो प्रथम पुरस्कार के असो मुड़ो हर्षोतों ये पुरस्कार अधिक आधुनिक एवं वैज्ञानिक बागवानी प्रणाली फसल विविधीकरण मॉडल और उच्च मूल्य वाली फसल व प्रभावशाली प्रदर्शन रे वास्ते किया सो मुड़ो हर्षोतों हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग व प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड 2026 रे सेमीफाइनल व्यवस्थ के सो चुनो हा शोतों राष्ट्रीय स्तर पर मूल रेस उपलब्धि वे तहत आयोग वे स्कोच ऑर्डर ऑफ मेरिट थों भी किया सो सम्मानित बछूरे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू है किया इस सफलता पर आयोग रे अध्यक्ष कुलदीप कुमार दीवान जो किया शोतों और त्यारे सदस्य जो किया सो बधाई दितिहीन और वाकई में सो बधाई रे पात्र बहीन शोतों। तो जानकारी रे सिलसिला ही चलते रहना हा शोतों तो सब बन रहे समय आर जे सचिन कपूर सोगे और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा बिल्कुल लाइव होने कर देन अपने अपने रेडियो सेट में वेडी गुंजन धर्मशाला मंच आइया लेकर चलते तू सभी जो हाँ कॉल जरूर कर सकते हैं जनाब 7081 8119 पर नंबर अक मौके फिर आऊँ तू दसना चाहता 7081 8119 पर ता थोड़ी कर दुतकनी गल किया सो आऊँ शेयर करनो मुझो कसकी वे थ्रू थ्रू किया सो ये पता लगो शो तो सो बल देना थ्रू थ्रू पता लगो कि मनो बलदा इनकी इस कार्यक्रम में सचिन किया सो ये बलदा कि हिंदी अंदर ना कनाना और गद्दी ओ ज़्यादा किया सो मतलब रिगार्ड करता हा तो श्रोताओं दसना चाहता कि एक कार्यक्रम के स्लोट के खासकर चूर थो पंच के बिल्कुल इन गद्याली प्रोग्राम वास्ते या तो आऊँ इतनी कि सो गद्याली अंदर ही आऊँ गल करी सकता हाँ और इवन कि आऊँ हमेशा तो चाहता कि जो भी इन कॉलर्स है सो के कनेक्ट होंगे सो गद्याली भी भून हिंदी भी भून लेकिन कोशिश करने की पहाड़ी भी बल्ले लैन है ना क्योंकि अब कोई मुझे कॉल करता दाड़ी थो या धर्मशाला थो और सो बोलता कि मुझे पहाड़ी ना हिंदी चलो गद्दी तो मन नहीं सकता है कि शायद ना हिंदी बोआ हिंदी बोली ना हिंदी बोआ लेकिन कांगड़ी हिमाचली तो कांगड़ी तो हिंदी ही होने है ना तो यह कि इस लोट चूट थो पंज के सो इंदा अपना मतलब इस खास कार्यक्रम रा स्लोट है गादा प्रोग्राम रहे स्लोट है तो इस प्रोग्राम में आऊँ ये प्रेफर करनो कि इन ही गीत और इन जानकारी तो ये सकते हैं छोटों की ये जानकारी के ना बिल्कुल गदयाली भाषा अंदर बोली अंदर ही सो तू सुधक पहुँचंदा हा छोटों है ना और ये नहीं कि सीधा ही करी पहले पढ़ना पैंती समझना पैंती ने खबर तत्ती बाद अपने दिमाग बखालने पैंती तत्ती बाद गद्दी अंदर गया सो ट्रांसलेट करना पैंती पहले मुझे तो खबर समझ चली है कि खबर आ गया ताई तो फिर अपनी भाषा अपनी बोली में समझाई सकूँ है ना तो स्लोट चूट तो पहुँचा अपना गादे कार्यक्रम पर स्लोट ताऊँ इतियाँ सिर्फ गद्दी ही बलनों और प्रेफर भी अपने मनु करनो हाँ
चलिए ता और भी जानकारी दोगे जरूर साझा कर ले, शेयर कर ले, बनी रहा रेडियो इंजन रिगून सोगे। और कॉल जरूर कर सकते हैं छोटों 708-8870-9 पर नंबर एक मौके फिर आऊँ शेयर करें नो इस लाइव कार्यक्रम में कॉल करने वास्ते 708-8870-9 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत क्या सो होने सकते हैं श्रोतों। आइए जीता अह लेकर चलते तुसु थोड़ा करे और हगू और हगू लेकर चलते न और हुन देन श्रोतों तू सब भी जो है प्यारे दिया गीत बने रहे जुड़े रहे आर जे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने पन रे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे आले के चलते बिल्कुल श्रोतो कचो की जिंदगी सोनी है ना श्रोतो जिंदगी खूबसूरत है जिंदगी हसीन हाँ सिर्फ है कि जीने रहा तरीका कि असो इंसान रब होना चाहता हा। बहुत सारे मनु ये बलते ने कि है अपनी जिंदगी थो फ्रस्ट्रेट बुझ गया है अपनी जिंदगी थो परेशान बुझ गया है ना असू ये ने ते ने नौ ने अस्ताए ने मंजोले फलानी चीज़ ने फलाना ने लेकिन शोतो सोचा कि तू सुहा खूबसूरत जिंदगी की असो भगवान ने देते रहे और इसी जीने वा आनंद इसी जीने वा स्टाइल कि असो तुसु लै अपने आप बुने चाहता मेहनत तो करना ही पैने शोतो अगर अगर मेहनत ना कर ले तो अपनी ख्वाहिशा की पूरी कर ले है ना और जिंदगी सोहनी है तो आइए इस बीच ये प्यारे दे गीत किया सो होने लेंदे ना सब भी

शोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला। तो ये सब बी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गया नया सो चल रही। तो बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रा, सभी श्रोतागण रा। क्या हाल चाल है शोतो तुंदे? उम्मीद करना हो तुंदे सभी रे हाल चाल के अनसो ठीक भूणे न और खरे भूणे हिन और मस्त भूणे हिन, तंदुरुस्त भूणे हिन, जो कि भूणे भी चीन दें श्रोतो। फिलहाल आइए लेकर चलते तू सब भी श्रोता जो अगली जानकारी रही और श्रोतों जानकारी रहा पिटारा की असोए खोलते रहना है श्रोतों जानकारी रहा जो सिलसिला हा असोए ही चलते रहना है। आइए लेकर चलते तू सभी जो वह अगली जानकारी रही और श्रोतों एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक यानी कि एडीआर री वर्ष 2026 री रिपोर्ट रे अनुसार हिमाचल रे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू शिक्षा और घोषित संपत्ति दोनों मामले में के असो उत्तर भारत रे मुख्यमंत्रियों मंच सप्तों हगों हिन श्रोतों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू के असो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय थों एमए और एलएलबी भी डिग्री की असो प्राप्त कर रहे हैं श्रोतों। शैक्षणिक योग्यता रे मामले व मामले में सो उत्तराखंड रे सीएम पुष्कर सिंह धामी और राजस्थान रे सीएम भजन लाल शर्मा वे के ने सो बराबर हिन, जबकि पंजाब रे सीएम भगवंत मान 12वीं पास हिन श्रोतों। सुखु 7.81 करोड़ रुपये भी चल अचल संपत्ति सोगे के असो उत्तर भारत रे मुख्यमंत्री मां शी सप्तों हगू हिन। तुलना रे मामले मां हरियाणा वे सीएम नायब सिंह सैनी विल्ले के असो 4.5 करोड़ रे संपत्ति है। उत्तराखंड रे सीएम लेके आस 17.34 करोड़ रे संपत्ति है और उत्तर प्रदेश रे सीएम योगी आदित्यनाथ ले कुल 1.54 करोड़ रुपये वे संपत्ति है और ये और पैसे के अन्य दर्ज बचूरे हैं श्रोतों जो इन्हें अपने लखूरे हिन जो यार जो एडीआर रिपोर्ट रे अनुसार सुले जानकारी पूछे सो है तो सुतक किया सो पहुंचाए हर्षो तो सब हुनु कर देने इस समय आरजे सचिन कपूर जो बिल्कुल लाइव अपने अपने वीडियो सेट में इस तो की अगली जानकारी तू होगी शेयर करनो। हिमाचल प्रदेश 3758 ग्राम पंचायत जो सोल में वित्त आयोग थो मिलने वाली ग्रांट पर संकट के असो मंडराव करता हर्षो तो जी बिल्कुल। केंद्र सरकार है कि राशि जारी करने तो पहले चार बहुत ज़रूरी शर्त के अनुसार लागू करी यानी कि चौर बहुत ज़रूरी शर्त के अनुसार लागू करी इतिमा चौदह में वित्त आयोग री पूरी राशि व उपयोग ठीक है वर्षा पुस्तिका एयरबुक व समापन ठीक है 31 मार्च तक कैश बुक बंद होने ऑनलाइन ऑडिट पूरा भूना और समर्थ पोर्टल पर पंचायतारी आय दर्ज भूना शामिल करो हा। इन ये सभी शर्ता जो पूरा भूने थो बाद ही किया सो पंचायत जो वित्त आयोग री राशि किया सो जनाब जारी भूने हा। तो चलिए जी जानकारी रहा सिलसिला तो ही चल रही रहना आरजे सचिन कपूर सोगे और लेकर चलते तू सब भी जो वेरी गुंजन धर्मशाला मंच तो है बन रहे हैं और लेके चलते प्यारे दे खूबसूरत दे गीत तारी कनारी शो तो बने रहे जुड़े रहे आसूसों गए और गीतारा भंडार गीतारा पिटारा गया शो तो सोए चले रहना हा। तुंदे सभी रे रेडियो सेट में वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच गूंज अपने बन रही और गूंज जितने भी इंदे प्यारे प्यारे शोदा असोगी बन रहे हैं असु हुनु करते हैं इवन की फेसबुक रे माध्यम तो असु हेरू करते हैं। चलिए लेके चलते तू सब भी जो इस गीत तरीके ना रही

0: ना माना सो सो गहने तकड़ी बारने तो ये सब हूँ कर दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला और सो सो गहने अज तक बलने रही गल है सौ सौ गहने वारदे लगना पता कि कितने भी ये सौ बंदे ने फिलहाल जी अक गहने बने गए छाछकनी डेट में हाँ लिटल ही शतो अक जो मिडिल क्लास फैमिली वा अक जो मिडिल क्लास फैमिली हा शतो अनेकों मिडिल क्लास फैमिली हिन है ना मतलब तो है आपको सोचा कि सोना आजकनी डेट में कि कड़ी की जरूर रहा और जो मिडिल क्लास फैमिली ना है तो है ना सो कड़ी सो गहने कड़ी बनाई सकते हैं दुए बनेगा सो बड़ बड़ी मोटी गल वो चिकन दे सौ तो बड़ी दूर रही गल सौ तो ना बनाई सकते न मामा चलिए है गीत अंदर है और सौ तो मुझे लगता सुजाता भारद्वाज तो है वो की अच्छा मुझे लिरिक्स कसेरे ने हाँ सुजाता भारद्वाज रहे लिरिक्स ने सुजाता भारद्वाज तुझको ये सवाल जरूर है मेरा कि सौ गहने तो है लिखी दी तुरन जे अगर कसकी फरमाइश करी दी कसकी कसकी अर्धांगनियाँ फरमाइश करी दी कि हाँ मुझे सौ गहने चींदे रहे तो फिर सुबचारा कर गला और सो गहने तुस वो मुड़े सकते न अपने आप आपू सोचा तो है ना मुड़े सकते ना तो चलिए है गीत और गीता गल मजाक अंदर की सो खरी लगते हैं श्रोतो फिलहाल इन श्रोता गणा सो गए कनेक्टेड बच गया हिन पुछ दिन कौन बल्लू दिन नमस्ते जी
1: नमस्ते सतन जी नमस्कार
0: नमस्ते जी नमस्ते
1: ओ ठीक ठाक है ना
0: बड़ी अजी जंगा पीड़ा लग रही बाकी ठीक आऊं क्या पता क्या लग रही है सच्ची लग रही है कभी कभी बंदा ना कि इंसान अपने मन री गल की सो एकदम में बलींदा
1: जी जी जी जी दवाई दुई लिया था
0: दवाई ता लेना पहले ये सब हो गए हाँ जी ताले ता शरीर शरीर बुढ़ा बिना बुवाइंदा क्या चक्कर लाए
1: बिल्कुल बिल्कुल आली ना बुद्धे हो गया कितने बजे सारे रहे जी
0: तुसो कितने लग दे जनाब
1: अब तो मैं तो ये रे ना तो मैं तो ऐसे ही हूँ धर्म दाऊ
0: हाँ जी ना फिर भी गल बात थो कनेने के तैने थो लगे गंदा पता कितनी करी उम्र है बंदे रे
1: ये 35 साल होने मेरे भाई दी
0: है हाँ जी हाँ जी 35 तो नहीं आती किया 31 साल
1: हाँ बस मेरा ये आइडिया
0: हाँ जी 31 साल है जी 31st रनिंग है अजकल इतनी है ना जी 50-60 का जीव कर देना है क्योंकि इनका खान पीन तो हिसाब भरा
1: हाँ जी
0: हाँ जी हाँ जी तो कदी चौमिन मोमो ना खूरे बुने मुझे लगता शायद जिंदगी में
1: बस दाड़ी खाए रे की तो 2 दिन बुखार रे हो मुझे
0: अच्छा चौमिन मोमो वाला इना बच्चा है तो सोजंगा पीड़ा लगनी ने
1: स्वाद बड़ा था तो पीएं दे
0: स्वाद बड़ा लेकिन सो इतना ज्यादा स्वास्थ्य हानिकार का
1: हाँ जी हाँ जी
0: फिर भी ऐसा है तो चीजों जो किया सुग्रहण करते हैं है ना
1: बहुत ज्यादा जी बच्चे मेरा पोतर हो बंदा जी बस चौमिन या मोमो खाए जा
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बस चौमिन मोमो लेस कुरकुरे और तुसु दसो ये बीमारी रा घर है है ना ऐ लोग समझ दे ने ना अपने बच्चे जो है दा चुकाने वास्ते कि सो इन्हीं चीजा दीन देन है ना
1: बिल्कुल जी हंजा खाना ना
0: खा टेरी जगह है करखा चलो केला लेगा फ्रूट लेगा कोई बच्चे हो है ना गंद बला तो खुआना ना चाहिए लेकिन सो है ना कि दा चुकाने वास्ते है लेगन दे करखा 10 रा पोड़ो है ना 20 रा पोड़ो लेगा ना सुखी खा ले ले बच्चे इंदे जी
1: हां तो लौरी ना गप बलवे बल्लू बंदे की वे इंदा गादा प्रोग्राम कर तो बंदे की ना करदा गल
0: हां जी हां जी
1: तो सब

0: बना कोई बनेगा ना तो फिर बनाएंगे रे भी बनेगा ना सब यार बनेगा ना यार सब तब दादी दादी बना तो सर की पोतरू खरे जवान बना बना ये बनते करना बोला रे
1: हाँ जी हाँ जी
0: तो था से अंग्रेजी भी मारने आता से फिर जतियां दी ना अपनी हिंदी बन दी ना
1: जी जी जी
0: इनका कल्चर है बड़ा वापस ही बंदा अधिकारी और बड़ा प्यारा कल्चर है इनका एक आधा कल्चर है
1: जी इस कार्यक्रम सचिन बड़ा मतलब पैंपर करदा और बड़ा विगाड़ करदन कि ये गादा कार्यक्रम और इस गादा कार्यक्रम में के असो इंदे अपने के दिमनु कहन सो जुड़न सोई कॉल करन तो बाकी ना जुड़ सकता ऐसा वैसा अब तू पता कि सर्वगुण संपन्नताओं भी नहीं है ना कुछ कुछ खामी मुंजो में भी भूणी कुछ कमी मुंजो अंदर भी भूणी है ना तो कुछ प्यार भी कर दें तू सुन इंदे बुजुर्ग के त्यारा आशीर्वाद भी है तो कुछ एक मन हो के ना सो हो सकता नफरत भी कर दे वो ना
0: बिल्कुल बुला तो है नहीं ना दुनिया है
1: जी जी अगदे
0: ने ना जाते ना फन जाते हैं इन दिगान में बस ये हनाइन दे सब कुछ हनाइन दे बाजे ने हनाइन दे सब कुछ हनाइन दे लोग का ये सब अब फैसिलिटी सब मुझे एक जानना हो
1: सब फैसिलिटी देने बाद भी किया सुमन कुछ ना कुछ तो बनना है ना जी टाइम में बोलो ना कि सर्वगुण संपन्न कोई भी ना बंदा इस दुनिया में तो सोचा कि मनु है तो सीता माता जो भी किया सो ना रखे थी लांछन के सो लाइते थी ना तो है तो फिर सो तो भगवान ना है तो फिर एक मनु है ना तो कुछ तक खामी है सो अंदर भी बूनी शायद
0: बिल्कुल जी बिल्कुल
1: जी जनाब जी
0: बाद में हनाई दिया गंगा ना आया कि क्या सो बोलो हाँ हो रही थी बना करी सो क्या
1: गंगा ना
0: गंगा भी ना आया जमुना भी ना आया
1: जे तो ये पहाड़ी भजन है जी की गदियाली
0: है पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी भजन हाँ बड़े बढ़िया
1: गंगा ना आया है
0: हाँ जी हाँ जी गंगा भी ना आया है जमुना भी ना आया है कि दे दे अब दिन है होना तुम्हें बैठे ना
1: अच्छा
0: हाँ जी हाँ जी
1: अच्छा जनाब अगर मोड़ लाता हूँ जरूर ब्रॉडकास्ट कर दा
0: ठीक है सर ठीक है
1: ना और ना मोड़ लाता तो सु कोई अपना गादा गीत होने ला
0: ठीक है जी ठीक है धन्यवाद
1: ठीक है जनाब बहुत बहुत धन्यवाद है शुक्रिया फोन करने वास्ते जुड़ने वास्ते बहुत अच्छा लगो तुसु की गल करी करी
0: जी जी जी
1: जी जनाब थैंक यू
0: धन्यवाद सर
1: थैंक यू जी थैंक यू FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के न सो चल रही हिंद शतों ताई अगली जानकारी होगी तुसो रूबरू कर बंदे हिंद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू वे घोषणा वे अनुपालना में हिमाचल प्रदेश पुलिस वे 13 पात्र अर्ज पात्रित अधिकारी उप निरीक्षक सहायक उप निरीक्षक तथा मुख्य रक्षकों जो तैयारी मतलब सेवा देने वास्ते उच्च पद रा मानक रैंक के असो प्रदान करो हर्षोत्तम राज्य पुलिस विभाग रे एक प्रवक्ता है ये जानकारी की असो देते हैं कि जिला किन्नौर रिकॉम्पियो में आयोजित राज्य स्तरीय हिमाचल दिवसीय समारोह रे अवसर पर मुख्यमंत्री ये घोषणा करे है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस रे सभी पात्र अवज पात्रित अधिकारी एवं कर्मचारी जो कि तीनों समर्पित था अनुशासित और सराहनीय सेवा व समान सम्मान में किया जो तीन सेवा करे और दिन रात सेवा करे पुलिस वाले शोतों एक मानक उच्च पद प्रदान किया सो तीनों हा शोतों है ना जी तो जानकारी रहा सिलसिला जो तो ये चली रहना है और इन्हें श्रोता कॉल करो कर देती है सो जो गीत दसू कर दी थी सो तो जनाब ना कजो की लिरिक्स ना तो पता है मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन तस गीता जो लेके रही पर चला तुस वो अपना एक है सो तो सो गादी गीत हुन देन बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सोगे रेडियो गुंजन धर्मशाला सोगे और लेकर चलते तू सभी जो इस प्यारे दे गीत तरीके नारी।
2: अच्छा।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो इंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गहने सो चल रही थी दाम बल्लुंदा गजो की श्रोता भाई इजाजत ले लेनू अब 5 बजे मुलदे फिर 4 मिनट बाद बुलेटिन लेकर बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सोगे और रेडियो गुंजन री इसी गूंज सोगे मिलदेन श्रोतों बढ़ने थोड़ी देर बाद तू सब भी होगे FM बैंड 91.2 MHz पर रहे बने रहे जुड़े रहे।

स्थान होंगे। हिमाचल बोर्ड ने मार्च 2026 से 10वीं 12वीं परीक्षा के पैटर्न बदले। शिक्षा व संपत्ति में उत्तर प्रदेश उत्तर भारत के सीएम में सीएम जो है वो सबसे आगे हैं। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सीबीएसई सरकारी विद्यालय 5 वर्ष में राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान के रूप में उभरेंगे। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को शिमला स्थित एक निजी स्कूल के स्थापन दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। इसी दृष्टिकोण के तहत सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू किया गया है तथा 156 सरकारी विद्यालयों को सीबीएसई से संवर्ध किया गया है। श्रोतों, इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और सरकारी विद्यालयों में 24,000 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आगामी मार्च 2027 में आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के स्वरूप में एक ऐतिहासिक और बड़ा बदलाव किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और पर्ख के दिशा निर्देश के अनुरूप तैयार किए गए इस नए पैटर्न का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी गुणात्मक पूर्ण और छात्र केंद्रित बनाना है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 दिवसीय इंटरनेशनल एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एवं ऑर्गेनिक एक्सपो 2026 में हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग को प्रथम पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार आधुनिक एवं वैज्ञानिक बागवानी प्रणाली फसल विविधीकरण मॉडल और उच्च मूल्य वाली फसलों के प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए मिला है। श्रोतों, हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड 2026 के सेमीफाइनल के लिए चुने गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मिली इस उपलब्धि के तहत आयोग को स्कोच ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी जो है वो सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस सफलता पर आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान व सदस्य को बधाई दी है। ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक की वर्ष 2026 की रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिक्षा और घोषित संपत्ति दोनों मामलों में उत्तर भारत के मुख्यमंत्रियों में सबसे आगे रहे हैं। श्रोतों, मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से MA और LLB की डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक योग्यता के मामले में वह उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी और राजस्थान के CM भजन लाल शर्मा के बराबर है। श्रोतों, जबकि पंजाब के CM भगवंत मान 12वीं पास है। सुक्खू 7.81 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति के साथ उत्तर भारत के मुख्यमंत्रियों में शीर्ष पर है। श्रोतों, सबसे आगे हैं। तुलना के लिए हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी की संपत्ति 4.5 करोड़, उत्तराखंड के CM की संपत्ति 3.34 करोड़ और उत्तर भारत के CM योगी आदित्यनाथ की संपत्ति 1.55 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश की 3,758 ग्राम पंचायतों को 16वें वित्त आयोग से मिलने वाली ग्रांट पर संकट जो है वो मंडरा रहा है। केंद्र सरकार ने ये राशि जारी करने से पहले 4 बहुत ज़रूरी शर्तें लगाई हैं। श्रोतों, इनमें 14वें वित्त आयोग की पूरी राशि का उपयोग वर्ष एयरबुक का समापन, 31 मार्च तक कैश बुक बंद होना, ऑनलाइन ऑडिट पूरा होना और समर्थ पोर्टल पर पंचायतों की आय दर्ज होना शामिल है। इन सभी शर्तों के पूरा होने के बाद ही पंचायतों को वित्त आयोग की राशि जारी की जाएगी। इसी के साथ आइए लेके चलते हैं अन्य जानकारी की ओर। चंबा में 28 घरों को नुकसान। श्रोतों, कई वाहन जो हैं वो दबे। जी बिल्कुल,

हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच जो है वो भारी बारिश के चलते चंबा जिला में खूब कहर जो है वो बरपा है। शोतौन जिला में जहां 28 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, वहीं कई वाहन को नुकसान भी पहुंचा है, बहुत सारे वाहनों को नुकसान भी पहुंचा है। शोतौन चंबा शहर के सुल्तानपुर बोर्ड सुल्तानपुर वार्ड सहित उदयपुर वैसरोल पंचायत में बारिश ने जो है वो जमकर तबाही मचाई है। सुल्तानपुर मोहल्ले में कई घरों और दुकानों में पानी और मलबा घुस गया। श्रोताओं, कई परिवार को बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्हें रात में ही सुरक्षित स्थान पर जो है वो जाना पड़ा। कुछ मकानों पर बड़े पत्थर गिरे और सड़क किनारे जो है वो श्रोताओं कई खड्डे भी हो गए काफ़ी बड़े बड़े, वहाँ पर भी कई वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त हुए। प्रशासन के अनुसार 28 मकान और एक दुकान को नुकसान पहुँचा है। श्रोतों, चंबा संपर्क मार्ग पर जो है वो कहीं ना कहीं एक वॉल जो है वो भी गिर गई है, यानी कि दीवार भी गिरी है और स्कूल की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जो है वो बड़ी है। बारिश के कारण उदयपुर पंचायत में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। श्रोतों, बनीखेत में खाई में समाई कार और 5 लोगों की जो है वो मृत्यु हुई है। बिल्कुल चंबा पठानकोट NH पर जो है वो बनीखेत के पास लाडू में एक कार गहरी खाई में जो है वो जा गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की जो है वो दर्दनाक मौत हो गई है। इसमें से मैं बताना चाहता हूँ, मरने वालों में से 3 महीने का एक नवजात भी शिशु शामिल है। पुलिस ने शव को जो है वो सिविल अस्पताल डलहौजी में पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया है और मामला दर्ज कर दुर्घटना के विस्तृत कारणों की जांच शुरू कर दी है। श्रोतों, इसी के साथ ये खास बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और आज 29 जुलाई का दिन है और शाम के 6 बज गए हैं। श्रोताओं, ये समय आप सभी जानते हैं कि रहता है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का। तो आज का ये कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुनेंगे आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। सबसे पहले अपने सभी प्यारे श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे श्रोताओं। और 88.4 मेगाहर्ट्ज पर हमीरपुर के डटवाल की आवाज़ पर भी आप हमें सुन सकते हैं और सुन भी रहे होंगे। हमीरपुर के श्रोताओं को भी सुषमा की प्यार भरी राम राम। उम्मीद करते हैं सभी ठीक ठाक होंगे और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। तो श्रोताओं, लीजिए, आपका इंतज़ार हमने कर दिया ख़त्म, यानी कि हम हाजिर हो गए हैं कार्यक्रम को लेकर। और अब आने वाले 2 घंटे का सफ़र रहेगा हमारा, यानी कि आपका और मेरा। हम कार्यक्रम में रोज़ाना की तरह बातचीत करेंगे, साथ ही आपका मनोरंजन करवाएंगे प्यारे प्यारे गीतों के साथ। लेकिन श्रोताओं, आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी हम करेंगे लाइनों के साथ। माना कि ज़िंदगी की राहें आसान नहीं, लेकिन मुस्कुराकर चलने में कोई नुकसान भी नहीं। बिल्कुल श्रोताओं, ज़िंदगी की राहें ऐसी ही हैं और जैसी भी राहें हों, हमें मुस्कुराकर ही आगे बढ़ना चाहिए। और कार्यक्रम में भी हम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करती हूँ मेरे सभी श्रोता भी इस समय मुस्कुरा रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे कि कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला अब शुरू हो गया है। आज बातों में क्या है, जानकारियों में क्या है, वो जानने के लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतज़ार। सबसे पहले श्रोताओं, आज खास एक दिन हम सभी ने मनाया और मना भी रहे हैं, तो आज गुरु पूर्णिमा की आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। तो श्रोताओं, ज़रूर इस पर भी बात करेंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, एक नारी दो रूप। इस फिल्म का गीत श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, जिसका समय रहता है शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का। और श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। रोज़ाना ये कार्यक्रम हम सभी लेकर आते रहते हैं। श्रोताओं, बहुत सारे हमारे आज फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप सभी जानते हैं, और आज का ये मौका मुझे मिला आपके साथ बात करने का श्रोताओं। और कार्यक्रम में जानकारियों के साथ साथ आज के ख़ास दिन पर भी आपके साथ ज़रूर बात की जाएगी। श्रोताओं, जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि आज गुरु पूर्णिमा है, यानी कि आज गुरुओं का दिन है। तो श्रोताओं, सबसे पहले अगर हम देखें अपनी लाइफ में, तो हमारा सबसे बड़ा गुरु हमारी माँ होती है, जिसने हमें इस दुनिया को दिखाया। दूसरा गुरु अगर देखा जाए तो हमारी धरती माँ है, जिस पर हम पल बढ़ रहे हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे पिता, जिनकी उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा। और ये चलना सिर्फ और सिर्फ तब तक ही नहीं जब तक हम गिर नहीं जाते, सारी उम्र हम अपने पिता की उंगली पकड़कर चलते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते आए हैं। और उसके बाद आते हैं शिक्षक, जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। हम बचपन से लेकर जब तक हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, उनकी छत्र छाया में रहते हैं और उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। किताबी ज्ञान तो सीखते ही सीखते हैं, लेकिन ज़िंदगी का और भी बहुत सारा ज्ञान हमें उनसे मिलता है। और श्रोताओं, एक गुरु और होते हैं, आध्यात्मिक गुरु। हर किसी का अपना एक आध्यात्मिक गुरु होता है, जिनकी कृपा हमें मिली है और हम उनके दिए गए ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हैं। और श्रोताओं, ये तो 5 गुरु मैंने आपको बताए, लेकिन इसके अलावा भी ज़िंदगी में बहुत सारे गुरु हमारे हैं। और वो कौन कौन से हैं, किससे हम क्या सीखते हैं, इस पर हम ज़रूर आज बात करेंगे श्रोताओं, क्योंकि आज गुरुओं का दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है, और गुरुओं पर बात करना बहुत ज़रूरी है और करनी भी चाहिए। लेकिन बातों के बीच बीच में गीत संगीत की जो झनकार है, ये बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। तो कार्यक्रम में फिर से लेकर आते हैं एक प्यारे से गीत को आपके लिए, और उसके बाद हम बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो लीजिए, आपकी नज़र करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

बिल्कुल श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और इस गीत को हम लेकर आए थे बहारें फिर भी आएंगी फिल्म से। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। शाम का ही समय होता है श्रोताओं, और हम सभी सारा दिन की अपनी जो थकान होती है उसे हटाने के लिए थोड़ी देर सुस्ताते हैं, बैठते हैं अपने घर में। अगर हम पहुंच जाते हैं तो अपने बच्चों में, अपने परिवार में बैठते हैं, और अगर अभी हम घर नहीं पहुंचे हैं तो हम रास्ते में होते हैं और ज़रूर कार्यक्रम के साथ भी जुड़े होते हैं। ऐसे गीत जब हम सुनते हैं श्रोताओं, तो कहीं ना कहीं गुनगुनाने का मन कर जाता है, और कहीं ना कहीं हमारे दिन भर की थकान जो है वो भी छू मंतर हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये गीत ज़रूर पसंद आते होंगे श्रोताओं, और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अब हम आगे बढ़ेंगे और जानकारियों की ओर भी रुख करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा के अनुपालना में हिमाचल प्रदेश पुलिस के 13 पात्र अराजपत्रित अधिकारियों, उप निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों तथा मुख्य आरक्षकों को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन अगले उच्च पद का मानद रैंक प्रदान किया जा रहा है। राज्य पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि जिला किन्नौर के रिकांगपियो में आयोजित राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के सभी पात्र अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी समर्पित, अनुशासित और सराहनीय सेवाओं के सम्मान में सेवानिवृत्ति के दिन एक मानद उच्च पद प्रदान किया जाएगा। इस घोषणा की अनुपालना में राज्य पुलिस मुख्यालय ने 12 मई 2026 को एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की, जिसमें इसमें पात्रता की शर्तों, सेवा अभिलेखों की जांच, स्क्रीनिंग व्यवस्था तथा मानद पद प्रदान करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाया गया। इसी व्यवस्था के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति ने पात्र अधिकारियों के सेवा अभिलेखों का परीक्षण किया तथा प्रथम चरण में 13 अधिकारियों को मानद उच्च पद प्रदान करने की स्तुति दी। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला के माध्यम से। और जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में हम आपके साथ और भी बातें करने वाले हैं श्रोताओं, लेकिन फिर से हम रुकेंगे यहाँ और आपको सुनवाएंगे पहले ये गीत। तो चलते चलते फिल्म का ये गीत श्रोताओं अब आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

श्रोताओं, आप सभी समय ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जैसे कि गुरु पूर्णिमा पर हम आज बात कर रहे हैं। श्रोताओं, गुरु पूर्णिमा आते ही सबसे पहले हमारे मन में अपने शिक्षकों की छवि जो है वो उभरती है। आज बहुत सारे श्रोताओं ने ज़रूर अपने गुरुओं को याद किया होगा, अपने स्कूल टाइम के, अपने कॉलेज समय के जो आपके शिक्षक रहे हैं जिनसे आपने कुछ सीखा है और उनकी जो छाप है, याद है, वो आपके दिलों में आज भी है, उन्हें ज़रूर याद किया होगा। तो श्रोताओं, उन्हें प्रणाम करना बनता है, उन्हें याद करना बनता है। लेकिन अगर देखा जाए श्रोताओं, तो हमारी ज़िंदगी में सिर्फ गुरु ही वो गुरु नहीं है जो हमें स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाते थे, नहीं, ज़िंदगी का सफ़र हमें ऐसे बहुत सारे गुरुओं से मिलवाता है जो हमें बिना किसी किताब के पढ़े भी बहुत कुछ, बहुत ज्ञान देकर जाता है। तो श्रोताओं, कभी कभार हमारे माता पिता हमारे गुरु बन जाते हैं, हमें कहीं ना कहीं उनका साथ, उनकी सलाह लेनी पड़ जाती है और कई बार हमारे मित्रगण, हमारे रिश्तेदार, वो हमारे गुरु बन जाते हैं। कभी कभी श्रोताओं, हमें बहुत सारी बातों में उलझन आ जाती है कि हम कहाँ जाएं, किससे कुछ पूछें, तो कहीं ना कहीं ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार हमें याद आते हैं जिनकी सलाह लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमें अपने जीवन के अनुभव से कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और कहते हैं ना कि गुरु वो होता है जो हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता दिखाता है, हम जहाँ भटक जाते हैं वहाँ हमें चलना सिखाता है। कई बार श्रोताओं, हमारे जीवन में बहुत सारे संघर्ष आते हैं और वो संघर्ष भी हमारे गुरु बन जाते हैं। असफलता हमें धैर्य सिखाती है, कठिन समय हमें मजबूत बनाता है, साथ ही गलतियां हमें बेहतर इंसान बनाने का रास्ता दिखाती हैं। कभी कभी तो श्रोताओं, प्रकृति भी हमारा गुरु बन जाती है, बहती नदी हमें आगे बढ़ना सिखाती है, साथ ही विशालकाय ये जो पर्वत हमारे सामने खड़े हुए हैं वो हमें अडिग रहना सिखाते हैं, पेड़ हमें बिना किसी अपेक्षा के देना सिखाते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा केवल किसी एक व्यक्ति को याद करने का दिन नहीं, बल्कि उन सभी लोगों, अनुभवों और परिस्थितियों के प्रति कृतज्ञ होने का अवसर है जिन्होंने हमें आज का एक अच्छा इंसान बनाया है। और भी श्रोताओं, प्रकृति के साथ भी हम जुड़ेंगे, प्रकृति किस तरह से हमारी गुरु है और उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छोटे से ब्रेक के बाद कार्यक्रम में हम फिर से जुड़ेंगे श्रोताओं और आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत। तो आप सभी बने रहिए यूं ही रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ और आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं कार्यक्रम में इस ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हमने ब्रेक से पहले बात की थी कि आपको सुनवाएंगे गीत, तो चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बहुत प्यारा गीत है श्रोताओं और ज़रूर आपको पसंद भी आएगा। गैम्बलर इस फिल्म का गीत श्रोताओं अब आप सुनने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

मेरा मन तेरा प्यासा। श्रोताओं, ये गीत बहुत ही प्यारा है और जब भी इसे सुना जाए तो मन करता है कि इसे सुनते रहिए। लेकिन श्रोताओं, ज़रूरी तो नहीं है कि अगर ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो आपको भी अच्छी लगती होगी, लेकिन बहुत सारे श्रोता ऐसे होंगे जिन्हें ये गीत ज़रूर पसंद आया होगा। अपने समय का बहुत ही मशहूर ये गीत था। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा पर। श्रोताओं, गुरु हमें ज्ञान देता है, सही राह दिखाता है और हमारी गलतियों से सीखने की प्रेरणा भी देता है। यही काम समय भी करता है, इसलिए श्रोताओं ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा गुरु अगर कोई है तो वो है समय। बिल्कुल, समय हमें जो सिखा सकता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। श्रोताओं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि शिक्षक हमें शब्दों के माध्यम से सिखाते हैं, किताबों के ज़रिए पढ़ाते हैं, लेकिन समय हमें अनुभवों से सिखाता है। वक्त जब अच्छा होता है श्रोताओं, तो वह हमें विनम्र रहना सिखाता है, और जब कठिन होता है तो धैर्य, साहस और संघर्ष का महत्व समझाता है। समय किसी के साथ भी श्रोताओं भेदभाव नहीं करता है, वह हर किसी को अवसर भी देता है और परीक्षा भी लेता है। अक्सर श्रोताओं हम कहते हैं कि काश उस समय हम वो फैसला ले चुके होते तो आज हमें पछताना ना पड़ता, और अगली बार बेहतर निर्णय लेना भी हम उसी से सीखते हैं। इसलिए बीता हुआ समय जो है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह हमेशा अपने पीछे कोई ना कोई सीख छोड़ जाता है। श्रोताओं, बहुत सारे अनुभव हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जब हमें लगता है कि ये जीवन बेकार है और हमें अब आगे नहीं जीना है, और उन समय के थपेड़ों को जब हम खाते हैं ना और उन थपेड़ों से निकल कर आगे बढ़ते हैं, तब हमें लगता है कि वो जो बीता हुआ समय था वो हमें कहीं ना कहीं मजबूत बना कर गया है, कुछ ना कुछ सिखा कर गया है। समय हमें ये भी सिखाता है कि खुशियाँ हमेशा नहीं रहती, लेकिन दुख भी हमेशा के लिए नहीं होते हैं। हर रात के बाद सुबह आती है और हर कठिन दौर के बाद एक नई उम्मीद जन्म लेती है। बिल्कुल श्रोताओं, ये समय ही है जो हमें दिन व दिन समय पर कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है, तो समय को हम गुरु कह सकते हैं। तो कार्यक्रम में गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे श्रोताओं, और अब आपको सुनवाएंगे एक और प्यारा सा गीत। लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में एंजॉय कीजिए इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक को।

91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का समय रहता है रोज़ाना शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। ये 2 घंटे का सफ़र श्रोताओं आपके साथ बात करते करते पता नहीं कब गायब हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, और बहुत सारी बातें ऐसी रह जाती हैं जो हमने करनी होती हैं लेकिन समय उसके लिए हमें इजाज़त नहीं देता। तो श्रोताओं वही बात है कि समय जो है वो सबसे बड़ा गुरु है। समय हमें बहुत कुछ सिखाता है, समय के साथ हमें चलना पड़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि समय हमारे अनुसार चले लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए समय ने अपनी रफ्तार पकड़ी है श्रोताओं, और हमें भी उसके साथ उसी की रफ्तार में चलना चाहिए। जो इंसान नहीं चल पाता, रुक जाता है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है और उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। इसलिए कोशिश कीजिए कि समय के साथ चलिए। श्रोताओं गुरु पूर्णिमा पर हम बात कर रहे हैं, गुरु हमें ज्ञान देते हैं, सही राह दिखाते हैं और हमारी गलतियों से सीखने की प्रेरणा भी देते हैं। लेकिन अगर गहराई से देखें तो यही काम समय भी करता है। बिल्कुल जिस तरह से हम अभी समय की बात कर रहे थे, समय भी हमें बहुत कुछ सिखाता है श्रोताओं। समय चलता जाता है और समय से हमें यही सीखना चाहिए कि चलने का नाम ही ज़िंदगी है, चलते रहना चाहिए। अगर हम एक समय को, एक मोमेंट को पकड़कर बैठे रहेंगे, अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो जाएगा तो हम उसके लिए दिन रात सोचते रहते हैं, और जब कुछ अच्छा होता है तो हम नहीं सोचते, हम उसी खुशी में उस समय के साथ भाग जाते हैं। लेकिन जब दुख आता है, बुरा समय आता है, तो हम क्यों रुक जाते हैं? इसलिए श्रोताओं कैसा भी समय क्यों ना आए, हमें अपनी रफ्तार को रोकना नहीं है, चलते रहना है, और कार्यक्रम को भी हमें चलाते रहना है। इसका मतलब है कि अब आपको हमने सुनाना है कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो लीजिए श्रोताओं आपकी नज़र करते हैं राजकुमार फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोता राजकुमार फिल्म के इस गीत के साथ कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और ज़रूर आपको ये गीत पसंद आ रहे होंगे। श्रोता कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं और आज हम गुरु पूर्णिमा की बात कर रहे हैं और साथ ही श्रोताओं आज 29 जुलाई का दिन है। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी मना रही है। ये दिन हमें उस शानदार जीव की याद दिलाता है जिसकी दहाड़ जंगल की ताकत संतुलन और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। श्रोताओं बाघ केवल भारत का राष्ट्रीय पशु नहीं है बल्कि हमारे जंगलों का प्रहरी भी है। जिस जंगल में बाघ सुरक्षित होता है वहाँ का पूरा तंत्र भी स्वस्थ माना जाता है। इसलिए बाघों की रक्षा करना दरअसल जंगलों नदियों पेड़ पौधों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा करना है। श्रोताओं जब भी इन जंगलों में हम जाते हैं और इनका कटान करते हैं कहीं ना कहीं हम बिल्डिंग बनाने का सोचते हैं रोड बनाने का सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके घरों पर अटैक करते हैं, यानी कि वो जंगल जो है इन वन्य जीवों का घर है। और होता क्या है और हो भी क्या रहा है, आजकल वन्य जीव चाहे वो बाघ हो या कोई अन्य जानवर हो वो हमारे घरों तक आ रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस जो हैं लोग डाल रहे हैं जिनके आंगन में रात के समय बहुत सारे जीव जंतु उनके आंगन में देखे जा रहे हैं जिनमें से बाघ भी हैं। तो श्रोताओं उस समय हम डरते हैं लेकिन उस समय हमें डरना नहीं चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि अगर हम उनके घरों में अटैक करेंगे उनके घर में कब्जा करेंगे तो वो हमारे घर तक भी पहुंचेंगे। फिर हमें डरना भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर हम उनके घरों को तहस नहस करने से नहीं डरते तो जब वो हमारे घर आते हैं तब हम क्यों डरते हैं। बिल्कुल श्रोताओं, और बहुत पुरानी बात जब कही जाए, जब हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे और वो जंगलों की बात करते थे तो जंगल में जाने से डरते थे कि वहाँ के जो वन्य जीव हैं वो कहीं हमें कोई हानि ना पहुँचा दें, लेकिन कभी भी उन्हें अपने घरों में या आंगन में नहीं देखा गया क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अब वो आ रहे हैं इसलिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं उनके घरों को छेड़ रहे हैं, जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं। तो श्रोताओं मैं तो ये कहूँगी कि ऐसे बाघ और ज़्यादा होने चाहिए जो कहीं ना कहीं हमें ऐसा करने से रोकें या हमें उनका डर हो भय हो, वो भय कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है और इसलिए हम जंगलों में पहुंच रहे हैं। तो श्रोताओं कभी भी किसी वन्य जीव को नुकसान ना पहुंचाएं, जंगलों में आग ना लगाएं और प्लास्टिक और कचरा ना फैलाएं, और यदि कोई घायल वन्य जीव दिखाई दे तो स्वयं जोखिम उठाने के बजाय वन विभाग या संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना ज़रूर दें। एक छोटी सी जागरूकता भी किसी जीव का जीवन बचा सकती है। तो श्रोताओं प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमारी बारी है कि हम उसे सुरक्षित रखें। तो आज के इस दिन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर संकल्प लें कि हम जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। बिल्कुल श्रोताओं बहुत ज़रूरी है और इस बारे में ज़रूर सोचिए और इस सोच को सब तक ज़रूर पहुंचाइए। और कार्यक्रम में हम अब पहुंचाने जा रहे हैं आप तक एक और प्यारा सा गीत, धन दौलत। इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, श्रोताओं आप सभी के रेडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अब समय है समाचारों का, तो चलते हैं पहले सुनते हैं समाचार।
1: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
1: राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना वर्तमान कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की नीति को दर्शाता है, जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि व्यापक और विस्तृत परीक्षणों के बाद कवच के 4th संस्करण को 20 जुलाई तक दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा के व्यस्ततम मार्गों पर 2500 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है।

मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने खराब वायु गुणवत्ता की समस्या से निपटने के लिए परिवर्तन नामक एक वाहन बेड़ा नवीनीकरण पहल को मंजूरी दी है। परिवर्तन परिवहन वायु प्रदूषण और उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन का कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुराने और अधिक उत्सर्जन वाले ट्रकों और बसों को स्वच्छ भारत स्टेज BS6 मानकों के अनुरूप और इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में महिला मुक्केबाजी में अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग और साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। पुरुष मुक्केबाजी में सचिन सिवाच ने 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं एथलेटिक्स स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने पुरुष शॉटपुट फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 91.2 मेगा हर्ट्स पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। जितने भी श्रोता हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं यानी कि 6 बजे से हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं उन्हें भी, और जो थोड़ा सा देर से हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को भी सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं और जिसका समय रहता है शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का, तो इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा पर। और अब आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के प्यारे से गीत की ओर, और इस गीत के बाद हम ज़रूर अपनी बातों को जारी रखेंगे। तो सुनिए अधिकार फिल्म का ये गीत श्रोताओं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।
1: ऐसी चीज सुनाए के महफिल दे ताली पे ताली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली।
2: वाह वाह

बिल्कुल श्रोताओं, जीना उसी का है जो कभी किसी के काम आता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी हमारी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हमें आगे बढ़कर उसका साथ ज़रूर देना चाहिए। कहीं भी किसी को किसकी ज़रूरत पड़ जाए ये तो कोई नहीं जानता। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल टाइगर डे की, और जो जानवर हैं श्रोताओं, वो प्रकृति ने हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए उन्हें बनाया है। तो देखते हैं कि हम किससे क्या सीख सकते हैं। शेर से सीखिए कि हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं होता। वह भूख लगने पर ही शिकार करता है। अपने अहंकार के लिए किसी से झगड़ना नहीं चाहिए। चींटी हमें सिखाती है कि छोटे कदम भी बड़े बड़े पहाड़ हिला सकते हैं। यानी लगातार बिना रुके, बिना शिकायत किए प्रयास करते रहना आपको बहुत कुछ देकर जाता है। मधुमक्खी, श्रोता, मधुमक्खी भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। मधुमक्खी बताती है कि मिलकर काम करने से असंभव भी संभव हो जाता है। साथ ही दूसरों के लिए भी मिठास छोड़ी जा सकती है। हाथी हमें याद दिलाता है कि ताकत का मतलब हिंसा नहीं होता। सबसे शक्तिशाली होकर भी वो अधिकतर शांत रहता है। साथ ही श्रोताओं, कुत्ता जो है वो भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। वफादारी, कृतज्ञता और वर्तमान में जीने का पाठ पढ़ाता है। उसे आपके बैंक बैलेंस से कोई मतलब नहीं और आपके उसे व्यवहार से ही प्रेम होता है। घोड़ा हमें सिखाता है अनुशासन और निरंतरता का प्रतीक है घोड़ा। रोज का अभ्यास ही मंजिल तक पहुंचाता है, ये घोड़ा हमें सिखाता है। इसके साथ साथ ही श्रोताओं, और भी बहुत सारे जीव हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं और हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। वो कौन कौन से हैं और उनसे हम क्या सीख ले सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत। बादल फिल्म का ये गीत श्रोताओं अब आप सुनने जा रहे हैं मन्ना डे की आवाज़ में।

श्रोता कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत, अपने लिए जिए तो क्या जिए। और इस गीत में हमने ये भी सुना कि हंसते रहो हंसाने के लिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। बिल्कुल श्रोता, हंसते रहना चाहिए और हंसाते भी रहना चाहिए। ज़िंदगी जो है वो छोटी सी है, इसमें गिले शिकवे लेकर अगर हम बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और ये ज़िंदगी कब हाथों से निकल जाएगी पता भी नहीं चलता। तो श्रोताओं, अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, औरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। गिले शिकवे अगर हैं तो उन्हें भूल जाइए। कार्यक्रम में इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि प्रकृति ने जो जानवर दिए हैं उन्हें, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और हमने बहुत सारे जानवरों की बात अभी की भी है। और आगे बढ़ते हैं श्रोताओं कि हम किससे क्या सीख सकते हैं। बाज़ की बात करते हैं श्रोताओं। बाज़ यानी कि ईगल जिसे हम कहते हैं, वो हमें सिखाता है कि ऊंचा उड़ना है तो कभी कभी अकेले भी उड़ान भरनी पड़ेगी। हम हमेशा सोचते हैं कि कोई हमारे साथ चलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम अकेले आगे बढ़ने की कोशिश करते ही नहीं हैं। तो श्रोताओं, कभी कभी हमें अकेले भी ज़िंदगी में आगे बढ़ लेना चाहिए। और साथ ही श्रोताओं, ऊँट हमें बताता है कि कठिन समय के लिए तैयार रहना चाहिए, और तैयारी करना बुद्धिमानी होती है। डॉल्फिन खेल और खुशी का महत्व समझाती है कि जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं बल्कि आनंद का नाम भी होता है। भेड़िया हमें सिखाता है कि एक मजबूत टीम विश्वास पर बनती है और केवल ताकत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, टीम पर भरोसा करना भी ज़रूरी है। श्रोताओं, हंस की बात करें तो हंस की परंपरागत भारतीय उपमा हमें विवेक सिखाती है कि सार को ग्रहण करें, व्यर्थ को छोड़ दें। गाय सेवा और धैर्य का प्रतीक मानी गई है। बिना शोर किए देना भी एक गुण है, ये हमें गाय सिखाती है। सांप सिखाता है कि हर समय हमला करना बुद्धिमानी नहीं, वह तभी डसता है जब उसे खतरा महसूस होता है। कछुआ याद दिलाता है कि धीमी गति भी मंजिल तक पहुँचा सकती है अगर दिशा सही हो तो। मकड़ी का हर बार जाला टूटने पर फिर से बनाना हमें ये बताता है कि असफलता उसके लिए अंत नहीं होती, वह फिर से शुरू करती है। कौवा अक्सर हमें समझाता है, सिखाता है कि अवसर पहचानने और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की कला हम में होनी चाहिए। पेंगुइन की बात करें श्रोताओं, तो कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का सहारा बनना सिखाती है। और हिरन हमें सजगता सिखाता है। लापरवाही कई बार जीवन की सबसे बड़ी कीमत बन जाती है। तो श्रोताओं, बहुत बड़ी सीख ये जानवर हमें देकर जाते हैं। श्रोताओं, हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, और प्रकृति के अनुसार जीते हैं अगर हम अपनी ज़िंदगी को तो बहुत अच्छा है। प्रकृति का सबसे बुद्धिमान प्राणी कहलाने वाला इंसान, क्योंकि इंसान ही है जो कहता है कि मैं बुद्धिमान हूँ। इस समय सबसे अधिक तनाव में है, जबकि जंगल का अधिकांश जीवन बिना मनोवैज्ञानिक बोझ के चलता है। बहुत गहरी बात है श्रोताओं, और इस बात को हमें समझना भी चाहिए। इसलिए हमेशा हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती श्रोताओं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के एक और प्यारे से गीत की ओर। सदमा फिल्म का ये गीत श्रोताओं, सुरेश वाडकर की आवाज़ में आप सभी के रेडियो सेट पर।

ये बहुत प्यारा गीत अभी आपने सुना कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में, ए जिंदगी गले लगा ली। कभी कभी हमें एकांत में बैठकर अपने जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए कि हम इस जीवन में क्या सीखे, हमने क्या किया, कहाँ तक पहुँचे, कहाँ हमसे कहीं गलतियाँ हुई। और श्रोताओं, ज़रूर ज़िंदगी के साथ बातचीत हमें कभी कभी कर लेनी चाहिए। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी इस समय सुन रहे हैं श्रोताओं, और कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

श्रोताओं, गूंज अपने पन की इसी गूंज के साथ हम कार्यक्रम में फिर से लौट आए हैं और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अब आपको फिर से लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। जॉनी मेरा नाम, इस फिल्म का गीत श्रोताओं अब आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की।

बिल्कुल श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत अभी आपने सुना कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। श्रोताओं, और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। श्रोताओं, अब हम उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां हम आपको सुनवाते हैं। क्या सुनवाते हैं श्रोताओं? नियमित श्रोता हमारे सभी जानते होंगे कि अब क्या सुनने वाले हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझे, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रेरणादायक कहानी। तो श्रोताओं, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है तो ज़रूर गुरु की ही बात करेंगे और ऐसी ही कहानी आपको सुनवाएंगे। तो श्रोताओं, ये कहानी है, एक बार एक युवा अपने गुरु के पास पहुँचा। उसने पूछा, गुरुदेव, मेरे जीवन का सबसे बड़ा गुरु कौन है? गुरु मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, समय तुम्हें ज़रूर देगा। युवा को बात समझ नहीं आई, लेकिन वह चुप रह गया। वह अपने जीवन में आगे बढ़ गया श्रोताओं, और कभी उसे सफलता मिलती, कभी उसे असफलता मिलती, कभी उसे अपनों ने उसका साथ दिया तो कभी वही लोग उससे दूर होते गए। कभी उसने गलती की और उसका नुकसान भी उठाया, तो कभी धैर्य रखा और बड़ी सफलता भी पाई। कई वर्षों के बाद वह फिर अपने गुरु के पास लौटा। इस बार उसके चेहरे पर अनुभव की चमक थी और गुरु ने उस शिष्य से पूछा, आप बताओ, तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु कौन निकला? युवा ने मुस्कुरा कर कहा, गुरुदेव, अब समझ गया हूँ। मेरी हर गलती ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया, हर असफलता ने मुझे मजबूत बनाया और हर सफलता ने विनम्र रहना सिखाया, और ये सब मुझे समय ने सिखाया। गुरु ने कहा, यही जीवन का सत्य है, जो समय से सीख लेता है उसे बार बार वही परीक्षा नहीं देनी पड़ती। तो श्रोताओं, इससे गुरु पूर्णिमा पर आइए, केवल अपने शिक्षकों को ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों, परिस्थितियों और अनुभवों को हम प्रणाम करेंगे जिन्होंने हमें बेहतर इंसान बनाया, क्योंकि जीवन में मिलने वाली हर सीख किसी न किसी गुरु का आशीर्वाद होती है। और श्रोताओं, हमें याद रखना चाहिए कि गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना और हर कदम से सीखना हमें समय सिखाता है। तो श्रोताओं, ये कहानी छोटी ज़रूर थी, लेकिन आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। साथ ही श्रोताओं, कहानी के अंत में ये भी कहना चाहेंगे कि जो भी हमें सिखाया जाता है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, वो हमें आगे लेकर बढ़ना चाहिए। हमारे बिहेवियर से, हमारी बातों से झलकता है कि हमारे संस्कार कैसे हैं। अपने संस्कारों को संजो कर रखिए और अपनी भाषा पर भी नियंत्रण हमें रखना चाहिए। तो कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और इस कहानी के बाद लेते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत, सौदागर। इस फिल्म का गीत श्रोताओं, सुखविंदर सिंह की आवाज़ में आप सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अब हमारी जो घड़ी है वो भी फटाफट भाग रही है, यानी कि कहीं ना कहीं अब अलविदा लेने का समय बहुत नज़दीक है। तो श्रोताओं, 7:45 पर हम आपको लिए चलेंगे शिमला की और प्रादेशिक समाचारों की ओर, और समाचारों से पहले ले चलते हैं आपको एक और खूबसूरत से गीत की ओर। लीजिए, इन्जॉय कीजिए इस प्यारे से ट्रैक को श्रोताओं।

0: शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं खरीदी कोई नई संपत्ति, भाजपा बेवजह कर रही बदनाम। पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रदेश में खनिजों के दोहन से प्राप्त राजस्व में 70% की वृद्धि दर्ज। केंद्र ने हिमाचल को CRIF के तहत 239.45 करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुक्खू सरकार के भर्ती व सेवा शर्तें कानून 2024 को रद्द करने के फैसले का किया स्वागत। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को खुले रहेंगे सभी सरकारी स्कूल, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए आदेश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया है कि भाजपा के नेता उन्हें बेवजह बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में ADR रिपोर्ट को लेकर भाजपा के आरोपों पर स्पष्ट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई नई संपत्ति नहीं खरीदी है और सारी संपत्ति का विवरण चुनाव के दौरान सार्वजनिक किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को संपत्ति या किसी अन्य मामले में संदेह है तो जांच एजेंसियां उपलब्ध हैं।
1: नई प्रॉपर्टी का ऐड नहीं हुई, जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी कम हुई है। वो अगले साल के एफिडेविट में आपको, जब हम चुनाव लड़ते हैं उस समय के एफिडेविट में आ जाएगी। तो ये चुनाव का एफिडेविट प्रकाशित किया गया है और इस चुनाव के एफिडेविट को इस तरह प्रकाशित किया गया कि नॉर्थ इंडिया में सबसे रिचेस्ट कोई अगर चीफ मिनिस्टर है तो वो इस प्रकार से प्रसारित करने की कोशिश की गई है। तो इसकी तो पहले इंक्वायरी हो चुकी है, ED इनके पास है, CBI इनके पास है। मेहनत और ईमानदारी से कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी व्यक्ति, कोई आम आदमी परिवार का आदमी कमा सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी वाले ट्रोल कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी की जानकारी ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले मेरी छवि को खराब करना चाहते हैं और किसी न किसी तरफ से उनका सोशल मीडिया अटैक करता रहता है।
0: कांग्रेस विधायकों के भाजपा में जाने की अटकलों पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो पार्टी छोड़ना चाहता है वो जा सकता है और कांग्रेस को विचारधारा से जुड़े लोगों की आवश्यकता है।
1: अगर कोई कांग्रेस का MLA BJP में जाना चाहते हैं, मैंने बोला जाए, खुला है। अब कोई बिकना चाहता है राजनीतिक मंडी में तो उसमें मैं कोई नहीं कर सकता, जा कोई नहीं रहा है। लेकिन कोई अगर जाना चाहता रोक तो नहीं सकते। हमारे पास तो कांग्रेस की विचारधारा के लोग, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से कई विधायक हमारे पास आते हैं, मिलते हैं कि अगला चुनाव में उनको लगता है कि टिकट नहीं मिलेगा तो कहीं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा जा सकता।
0: प्रदेश में पिछले 3 वर्षों के दौरान खनिजों के दोहन से प्राप्त राजस्व में लगभग 70% की वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में उद्योग विभाग के तहत खनन विंग के कार्यों की समीक्षा करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में मुख्य खनिज और लघु खनिजों से 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 340 करोड़ रुपए हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से केंद्र सरकार ने चूना पत्थर की रॉयल्टी की दरें संशोधित नहीं की हैं, जिससे राज्य की राजस्व प्राप्ति पर प्रभाव पड़ रहा है।

0: कहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अपना हक प्राप्त करने के लिए इस मामले को प्रमुखता से उठाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश को CRIF 2026-27 के तहत 239 करोड़ 45 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि इसके तहत प्रदेश की दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का उन्नयन किया जाएगा, जिससे विशेष रूप से सेब उत्पादक व बागवानी क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस राशि में से 203 करोड़ 52 लाख रुपए छैला नेरीपुल यशवंत नगर कुमारहट्टी सड़क के लिए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा 35 करोड़ 93 लाख टिक्कर जरोल खमाड़ी सड़क के पूर्व पैकेज से शेष 16 किलोमीटर भाग के उन्नयन के लिए प्रदान किए गए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार व लोक निर्माण विभाग के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप केंद्र से ये मंजूरी मिली है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उच्चतम न्यायालय द्वारा सुक्खू सरकार के संविधान विरोधी हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारी सेवा शर्तें विधेयक 2024 को रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है। शिमला से जारी एक बयान में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस विधेयक को पहले ही रद्द कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर की थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों पर नियमों के विरुद्ध कानून लाकर प्रदेश सरकार ने केवल अपने वित्तीय दायित्व को आने वाली सरकारों पर थोपने की साजिश की थी, जो अब बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व में प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव की खंडपीठ ने कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता का लाभ नियुक्ति की तिथि से देने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सुक्खू सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये विशेष याचिका दायर की थी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने सत्ता में आने के बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश की शिक्षा रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। चंबा जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंगला के अतिरिक्त भवन का शिलान्यास करने के बाद आज जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। रोहित ठाकुर ने कहा कि चंबा जिला में स्कूल भवनों के निर्माण व मुरम्मत कार्यों पर 5,38,00,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंगला स्कूल के अतिरिक्त भवन के लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
1: मंगला स्कूल में एक एग्जामिनेशन हॉल यहाँ पर स्टेज एक अतिरिक्त कॉम्बिनेशन की काफी समय से मांग रही थी, तो आज इसका शिलान्यास किया गया है और लगभग इसमें 73,00,000 से इनके आसपास की प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय अनुमोदन हमने दे दिया है और मैं आशा रखता हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र लोक निर्माण विभाग इसका कार्य प्रारंभ करे, ताकि एक निश्चित समय अवधि के अंदर 1-1.5 वर्ष के अंदर हमारा यह कार्य मुकम्मल हो।
0: प्रदेश में इस वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी सरकारी स्कूल खुले रहेंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों, प्राथमिक व उच्च और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के अनुसार प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह, गरिमा और देशभक्ति के माहौल में मनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त तहसील, उपमंडल और जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोहों में विद्यार्थियों और स्कूलों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषित संपत्ति पर सवाल उठाए हैं। आज ऊना में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी घोषित संपत्ति और उसमें हुई बढ़ोतरी को लेकर प्रदेश की जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करें। राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री कहीं अपनी संपत्ति में 700 कनाल भूमि को शामिल करना तो नहीं भूल गए। राणा ने आरोप लगाया कि दिल्ली के द्वारिका में टैक्सपेयर की खून पसीने की कमाई से 200 करोड़ की लागत से 100 कमरों का आलिशान हिमाचल निकेतन बनाया गया है, जिसे अब किसी बड़े सेठ के हवाले करने की चर्चा है। राजेंद्र राणा ने हमीरपुर के जोल सप्पड़ में 100 से अधिक PG कमरों के निर्माण पर भी सवाल उठाए हैं। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट कर पठानकोट चंबा भरमौर सड़क परियोजना का कार्य शुरू करने और इसे NHAI के तहत लाने के लिए उनका आभार जताया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों, सड़क संपर्क और अधोसंरचना विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की। इससे पहले राज्यसभा में सांसद हर्ष महाजन के सवाल के जवाब में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश दर्ज की गई है, जिससे विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन से 152 सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं और 68 पेयजल योजनाएं व 72 ट्रांसफार्मर प्रभावित हैं। हालांकि आज कुछ इलाकों में धूप निकलने से सुविधाओं को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी रहा। उधर लाहौल स्पीति जिले में संसारी नाला, किलाड़, थिरोट, तांदी मार्ग, रोहली और कडू नाला के बीच 30 व 31 जुलाई को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। जिला प्रशासन ने वाहन चालकों से इस दौरान वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की है। इस बीच मौसम विभाग ने कल 30 जुलाई को चंबा, कांगड़ा और मंडी में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि कुल्लू, शिमला, सिरमौर और किन्नौर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं खरीदी कोई नई संपत्ति, भाजपा बेवजह कर रही बदनाम। पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रदेश में खनिजों के दोहन से प्राप्त राजस्व में 70% की वृद्धि दर्ज। केंद्र ने हिमाचल को CRIF के तहत 239.45 करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुक्खू सरकार के भर्ती व सेवा शर्तें कानून 2024 को रद्द करने के फैसले का किया स्वागत। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को खुले रहेंगे सभी सरकारी स्कूल, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए आदेश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और समाचारों के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का समय भी अब समाप्ति की ओर है। उम्मीद करेंगे कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और ये गीत भी आपको अच्छे लगे होंगे। तो श्रोताओं, चलते चलते कार्यक्रम का आखिरी गीत आप तक पहुंचाएंगे मुकेश की आवाज़ में अनाड़ी फिल्म से। और इस गीत के साथ ही आपसे मैं लूँगी अनुमति, तो दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को आज के कार्यक्रम को सम्पन्न करने की इजाज़त।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात दे करके उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए और वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
1: तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
8: गजब टूटी वाला।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए। वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
1: तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच को मजा अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही होगा लगता, रख के भूल गया होगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
8: गजब टूबी वाला।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.5

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने नए पुराने

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात दे करके उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
1: तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
8: गजब टूटी बाजा।

पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

इस वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।